अच्छा, किसी को नहीं पता था कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है ऐसी भी कोई चीज होती है, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर्स जरूर गाइड करते थे, और धीरे धीरे से डॉक्टर्स से ज्यादा सोशल मीडिया गाइड करने पे आ गया कि सुनो गांव वालों, अगर आप अच्छा भी महसूस कर रहे हो बेबी होने के बाद, तो एक डिप्रेशन होता है जब आपको बुरा लगता है, मतलब कई बार हम उस थॉट प्रोसेस में जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया से जानने के बाद हमें वो सच्चा ही लगने लगता है। सो मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, रिसेंटली बड़े ही भारी दिल से अगर किसी ने इस बात पे जिक्र किया है तो वो है परिणीति चोपड़ा। हाँ जी, तो परिणीति चोपड़ा जो है उन्होंने कह दिया है कि डेफिनेटली ऐसा डिप्रेशन होता है और इसको फेस करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, एंड डोंट गो एनीवेयर, और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे गाने कर रहे हैं आपका इंतजार।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: रहो। सो एक एक करके जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही है। अरे यार डिमांड्स जो है ना वो कमर्शियली बढ़ती जा रही है, मतलब कि इतना नहीं इतना लगेगा अगर हमने कर लिया है तो। सो हेलो हाय, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अभी जो एक मूवी है रामायण वो अपने आप में कंट्रोवर्सीज में चल रही है, अपनी स्क्रिप्ट की वजह से, अपनी कास्टिंग की वजह से, अपनी सिंसियरिटी की वजह से, अपने VFX की वजह से। लेकिन अब इसके जो थिएटर राइट्स हैं, ऑफकोर्स इसमें एक बहुत हैवी बजट लगा है, तो इसके थिएटर राइट्स जो है ना वो 450 करोड़ के डिमांडिंग निकल कर आ रहे हैं कि जब तक इतना पेमेंट नहीं होगा तब तक इस मूवी को रिलीज नहीं किया जाएगा। सो डोंट यू थिंक कि आजकल इतनी जल्दी इतने सारे करोड़ में बातचीत कर दी जाती है कि हमें ये आउट ऑफ द रियलिटी लगता है कि नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं दुग्गल जी। तो डेफिनेटली दुनिया बहुत बड़ी है और अमाउंट बहुत बड़ा हो चुका है, बस हमें आगे जीरो लगाते जाना है, लगाते जाना है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: Do you remember? प्रियंका चोपड़ा ने जब शादी करी थी तो उन्होंने रेड कलर का लहंगा पहना था, सुर्ख रेड कलर का, है ना। और गोल्ड की जो ज्वेलरी पहनी थी उसमें कॉम्बिनेशन था व्हाइट गोल्ड का और येलो गोल्ड का। ओ माय गॉड, आज भी वो वीडियो अगर सामने आ जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब एकदम इन्होंने अनुष्का को कॉपी नहीं किया, इन्होंने अपना एक अलग वर्जन निकाला। सो डेफिनेटली प्रियंका चोपड़ा की चॉइस हमेशा अच्छी रही है। बट बाय द टाइम आपको अगर ज्वेलरी की चॉइसेस चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? आप पहुंचेंगे सिरांगुन रोड सिंगापुर, बिकॉज वहां पे जोया लुकास वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर आपके लिए इनक्रेडिबल ऑफर लेकर आए हैं। फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोल की एंड प्रेशियस ज्वेलरी, जो भी आपको चाहिए। ये ऑफर 14th ऑफ जून तक है और आपको 100% वैल्यू भी मिल रही है डायमंड एक्सचेंज पर। इजी पेमेंट प्लान्स भी हैं। तो पहुंचिए जोया लुकास ज्वेलरी स्टोर 320 and 134 सिरांगुन रोड। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% off, 40% joy Lucas.
3: 40% off? Oh my God! Let's go, let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon.
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में
2: आपको याद है कि न्यूज़पेपर में जब हम छोटे थे तो एक चीज आइडेंटिफाई करते थे, हिंदी न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ, जिसमें दो पिक्चर्स दे दी जाती थी, ठीक है, और वो 99% सेम होती थी, राइट? और उन पिक्चर्स में हमें डिफरेंस ढूंढना होता था। 7 to 8 डिफरेंसेस अगर हम ढूंढ लेते थे तो हम विनर बन जाते थे। डू यू रिमेम्बर आर चेयर पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ? और वो बचपन वाला जो गेम है ना, वो अभी भी चल रहा है। हाँ जी, इन दोनों पिक्चर्स में से अंतर पहचानो और लेकर जाओ। और ये डिफरेंस जो आया है वो रील और रियल की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हाँ जी, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये AI टूल से बनाई हुई चीज है या फिर ये असली में कोई शॉट लिया गया है। हाँ, तो देखो, इन द एरा ऑफ AI डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स पता है क्या बोल रहे हैं कि जब वो AI से कुछ वीडियो क्रिएट करते हैं ना, तो आजकल पब्लिक की एक अलग डिमांड आ रही है, और वो डिमांड ये है कि ये थोड़ा ज्यादा AI लग रहा है एंड इसमें थोड़ा सा रियल इमोशंस डालो इंसानों वाले। ओफो, ठीक है भाई, ठीक है, मतलब पहले लोगों को इमोशंस समझ में नहीं आ रहे थे तो AI चाहिए था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस चाहिए, तो मतलब इंसान को चाहिए क्या है? आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

अच्छा खासा काम कर लिया है। उनमें से एक है सुनील शेट्टी, हां जी, जिनके आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहे हैं धड़कन, बॉर्डर, हेरा फेरी, ना जाने कौन कौन से। तो भाई सुनील शेट्टी को एक बार फिल्म क्रिटिक्स करने वाले जर्नलिस्ट ने बोल दिया था कि सुनो तुम मूवी वूवी नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो भैया ये सब छोड़ के कोई रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। और आज देखो सुनील शेट्टी कितने बड़े आदमी हैं। बिल्कुल, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: भाई मूवीज के जो चर्चे हैं, स्पेशली जो एंटी कंट्री मूवीज होती है ना, मतलब जिस कंट्री के अगेंस्ट उन मूवीज को बनाया जाता है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उस मूवी का उसी कंट्री में निकल कर आता है। राइट, आपको पता है धुरंधर मूवी की नकली कॉपी सबसे पहले पाकिस्तान पहुंच गई थी, बिकॉज उसमें जिक्र ही ऐसा हुआ है। सो हेलो हाई, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। तो देखो, लाइफ में ऐसा होता है कि जो आपको करने को कहा जाए वो तो आप करोगे, जो आपको नहीं करने को कहा जाएगा वो तो आप डेफिनेटली करोगे। सो रिसेंटली पाकिस्तान में इंडियन कह सकते हैं या हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ प्यार एक बार और दिख गया है। हाँ जी, एक पाकिस्तानी ओरिजिन जो एक बंदा है जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहता है, उसने ना 250 सीटेड एक थिएटर बुक किया और उसने थ्री इडियट मूवी को वहां पर फ्री में लोगों के लिए चलाया और इनवाइट किया सभी लोगों को कि आओ इस मूवी को देखो और अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करो अपने गोल्स। सो कैन यू सी दैट यार, मतलब बॉलीवुड का चार्म अक्रॉस द ग्लोब है और लोग अगर इसे एक बार पसंद करने लगते हैं तो करने ही लगते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। अभी यू नो व्हाट, रिसेंटली साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इंडिया के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो बातों बातों में पता चला कि भाई कोरिया में भी इंडियन कुजीन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, एंड डेफिनेटली इंडिया में तो कोरियन फूड एंजॉय किया ही जा रहा है। ओहो हो, ये तो सारा मिक्स एंड मैच चल रहा है। लेकिन जब कोई नॉर्थ इंडियन फूड खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है, राइट? एंड सिंगापुर में ये कुजीन सबसे बेस्ट कहाँ मिलता है? डेफिनेटली शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में। अरे आज की बात नहीं है, पिछले 25 सालों से दे आर सर्विंग अस बेस्ट, एंड इसी ओकेजन पर ये सेलिब्रेशन मल्टीप्लाई हो चुका है। बहुत सारी डिशेस ना आपको $25 में मिलने वाली है, जैसे कि मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, शाही फिश, अमृतसरी करी, पालक पनीर, बहुत सारी चीजें आपको ना $25 में सर्व करी जा रही है ऑन द ओकेजन ऑफ 25th एनिवर्सरी। तो डेफिनेटली आप पहुंचिए रैफल्स सिटी सेंटर, जहां पर है अपना शाही महारानी रेस्टोरेंट। अगर आपकी टेबल का बिल 100+ डॉलर होगा, उसके बाद ही आप ये 25th एनिवर्सरी का जो ऑफर है वो अवेल कर पाएंगे। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: 40% off, 40% joy alukas,
5: 40% off, oh my god, let's go
6: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
7: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: भाई आजकल के लोगों के बहुत नखरे हैं यार, और उनके संग अच्छी चीज ये है, नहीं अच्छी क्या, बुरी चीज ये है कि लोगों के दो नखरे कंप्लीट करो तो 10 नखरे सामने खड़े हो जाते हैं। सो हेलो हाय, मैं आज ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि ये जो नखरेबाजी है ना, आजकल के बच्चे पता है कहाँ से सीख रहे हैं, या फिर आपने और मैंने अपने जमाने में कहाँ सीखे हैं? फिल्मों से, और क्या, इसी से पता चलता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो चलिए, मैं आज इन पर बिना नखरे करे हुए आपको बताना चाहेगी कि भाई नखरे तो अपने जमाने में बॉलीवुड सिनेमा के भी रहे हैं। यू नो व्हाट, 50s में एक मूवी की शुरुआत हुई थी और उसका नाम पता है क्या है? अरे यार, वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी पाकीज़ा, राइट? एंड यू नो व्हाट, ये एक लौटी ऐसी मूवी है जिसे बनने में 16 साल लग गए। पहले तो प्रोसेस भी बहुत बड़ा होता था, तो ये मूवी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में शुरू हुई काम करना, है ना, और धीरे धीरे मार्केट में जब कलर्ड चीजें आई तो इस मूवी की जो हीरोइन थी मीना कुमारी, उन्होंने कहा कि भैया ये थोड़ा कलर्ड वर्जन में बननी चाहिए, राइट? तो उसके बाद इसका कलर्ड वर्जन बनाना शुरू किया गया और धीरे धीरे करते ये मूवी जो है वो 1971 में तैयार हुई और 1972 को जाकर इसे रिलीज किया गया। तो भाई ऐसी फिल्में नहीं बन जाती, शुरुआत बहुत ही मुश्किल थी और अभी भी आसान नहीं है पब्लिक को इम्प्रेस करना या फिर थिएटर्स में 3-4 घंटे रोक कर रखना। फिलहाल मैं आरजे नुपुर जो गानों के साथ साथ बातों के साथ साथ आपको रोक कर रखती है यार मस्ती मॉर्निंग शो पर, अभी मेरा जाने का वक्त हो चुका है। मिलेंगे कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
7: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
8: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
9: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
0: एवरी वॉइस बिगिंस विद अ ड्रीम, अ नोट दैट डेयर्स टू फ्लाई। From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music Beyond Boundaries, beyond borders, beyond time.
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे,
0: पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: ए ओ आ, ए ओ आ, ए ओ आ।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो नमस्कार, वेलकम, कैसे हैं आप? आइए आइए, स्वागत है आपका मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग शो में। एंड द शो इज मस्ती हैंग आउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर स्टूडियो से सीधा आपके दिल तक। मैं हूँ कौन? मैं हूँ आपकी मुग्धा तिरकिधा, जो आज के इस बहुत ही स्पेशल और ऑस्पिशियस दिन पर आपसे मुलाकात करने आई है। आज का दिन ना बहुत ही खास है, 27th of May, और पूरे सिंगापुर का माहौल जो है वो तो खैर देखने लायक है ही। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हरी राया हाजी, जो है उनका बहुत ही पाक और बहुत ही शानदार खुशियों और मिठास से भरा दिन। सो बेसिकली आज के शो में फेस्टिवल्स की बातें होंगी, हमारे सिंगापुर की बातें होंगी, और ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आपके शो में मिठास घोलेंगे, बिल्कुल आज के इस दिन की तरह, त्योहार की तरह। लेट्स बी मोर कलरफुल, लेट्स बी अ लिटिल लाउड, और बहुत ही धमाकेदार, राइट? बॉलीवुड के सीक्रेट्स भी होंगे, OMG वाली खबरें भी होंगी।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय सिंगापुर, आज का दिन ना इट्स नॉट जस्ट अ हॉलीडे, जैसे कि मैंने कहा था छुट्टी है, दिस इज अ फीलिंग, फीलिंग वाला हॉलीडे। आज ना यहाँ पे हरी राया हाजी सेलिब्रेट किया जा रहा है, अ फेस्टिवल दैट रिमाइंड्स अस अबाउट सैक्रिफाइस, ग्रैटिट्यूड और एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया है इसके पीछे, पता है हरी राया हाजी का एग्जैक्ट डेट ना मून साइटिंग पर डिपेंड करता है, इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज में कभी कभी सेलिब्रेशन डेट्स जो होती हैं वो थोड़ी वेरी भी कर जाती हैं। सिंगापुर में मॉस्क्स और होम्स दोनों जो है इस वक्त फेस्टिव वाइब्स में डूबे हुए हैं, फुली फैमिली गैदरिंग्स हैं, डिलिशियस फूड है, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड ऑल, यू नो, मतलब अमेजिंग है, खुशबू ही खुशबू है पूरे सिंगापुर में। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स का बेस्ट पार्ट ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेलिब्रेशंस, वो होता है लोगों का एक साथ आना। तो अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय द वॉर्म फूड, एंजॉय द वॉर्म, और एक्स्ट्रा डेजर्ट ना थोड़ा इधर भिजवा देना यार हमारे स्टूडियो का एड्रेस पे, है कि नहीं। हम भी तो आए हैं छुट्टी के दिन आपके साथ फेस्टिवल मनाने के लिए। इतना तो बनता है ना।

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hi, welcome back. मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पे। दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर का स्टूडियो। चलो एकदम ताजी और होश उड़ा देने वाली खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। आप सोच सकते हैं कि आप सुबह सुबह चुपचाप अपनी MRT ट्रेन में बैठे हो और आपके पैरों के पास बिना टिकट कोई नया पैसेंजर गुजर जाए और आप ऐसे हो जाओ। राइट, एक वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पे लेक साइड और चाइनीज गार्डन स्टेशन के बीच में चलती हुई MRT ट्रेन के अंदर एक मोटा ताजा क्यूट सा चूहा जो है वो बिना टिकट के और बिना सही फेयर दिए मजे से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसेंजर्स डर के मारे सीट्स पर खड़े हो गए, कुछ लोग चिल्लाने लगे और तुरंत SMRT को पूरी ट्रेन को जो है सैनिटाइज और इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर्स देने पड़े। ये जो बिजार इंसिडेंट हुआ है ना, इससे एक चीज ध्यान में आती है। अर्बन बायोलॉजी में जब रोडेंट्स या वाइल्ड लाइफ इंसानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपना एक नया रास्ता बना लेते हैं तो उसे कहते हैं, कुछ नहीं कहते। कितने ध्यान से आप सुन रहे थे, कुछ तो कहते होगे यार। आज का मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल मैंने छुट्टी पर भेज दिया। अरे कौन इतना नॉलेज रोज इकट्ठा करेगा, सबकी छुट्टी तो आज उसकी भी छुट्टी है। बट दिस वन इज लाइक है तो वार्निंग्स, बिकॉज इस तरह से चूहे अगर MRT में दौड़ेंगे तो लोग कहाँ बैठेंगे, है ना। एंड वैसे भी इसने पूरा पैसा भी नहीं दिया होगा, टिकट भी नहीं था इसके पास, तो चेकिंग तो बनती है ना। Stay tuned, I'll be right back.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: Hi everybody, welcome back. आप सुन रहे हैं मुग्धा को and this is Radio Masti 24/7 Live, स्टूडियो से सीधा आपके दिल तक। अभी क्या है ना कि दिल और दिमाग पे छाने वाली बात करने वाली हूँ मैं। Why? वैसे भी देखिए सेलिब्रेशन का माहौल है, आज हरी राया है, कुछ दिनों के बाद एक और फेस्टिवल आने वाला है, पर फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं। अगर आज के त्योहार में चार चांद लगाने हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खास मौका है जो और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा जोया लुकास लेकर आया है, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर। आपको बता दें बिगेस्ट ज्वेलरी सेल अभी तक की। व्हाई? क्योंकि ये है द इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस, चाहे वो कोई भी गोल्ड हो, डायमंड हो, पोल्ड की हो या फिर कोई भी प्रेशियस ज्वेलरी हो। एंड दिस ऑफर इज वैलिड 14th जून 2026 तक। आई नो बहुत टाइम है, लेकिन आपको पता है ना जब ऐसी चीजें बहुत लिमिटेड ऑफर्स टाइम के साथ आती हैं, टाइमलाइन के साथ, तो सबको पहले काम करवाना होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आगे का जाने दो, वैसे बहुत हलचल है दुनिया में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं तो आपसे यही कहूंगी आज के दिन को और ऑस्पिशियस बनाइए, क्योंकि कोई भी त्योहार बिना सोने चांदी और किसी शुद्ध धातु की ज्वेलरी के पूरा नहीं लगता है ना। सो बढ़िया, जाइए सोच के कुछ और लेकर आइए कुछ। फिर मेरे को बताना आज क्या शॉपिंग करके आए, मुझे पता है बाद में बोलेंगे हाँ तुम्हें बताया था ये। अरे ले लो रे यार, बीवी को खुश करने के मौके बार बार नहीं आते हैं ना। लगे हाथ अपने लिए भी ले लेना कुछ और क्या।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

0: हूमू लग रहा है फैंस के समय, एंड दिस इज प्योर टारगेटिंग फैंस, तो ये कह रहे हैं. पता ये लगा है कि FWICE बॉलीवुड में होता है कुछ, उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया है. अब इसके बाद क्या होगा पता है, उनके बैन होने की अफवाहें जो हैं वो हर जगह ही उड़ रही हैं, जबकि अब जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो अपने धुरंधर के एक्टर है भाई, उनके लिए उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े है वो. फैंस आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिहाइंड रणवीर सिंह, लाइक ये क्या हो रहा है भाई, ये तो गलत है. जी हाँ, उनको बैन करने तक की साजिश आ चुकी है. मतलब अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी है कि एक छोटा सा मैटर था, मिल बैठ के सुलझा लेते, ये इतनी बड़ी बात क्या है. इसी से एक बहुत इंटेलिजेंट सी कैप्सूल आज छुट्टी पर जो गई थी वापस आई है मेरी. बॉलीवुड के मामले में सब वापस आ जाता है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब ट्रेड यूनियंस किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने पर रोक लगाती हैं, तो उसे लीगल और प्रोफेशनल भाषा में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था. ये देखा जाए तो एक ऐसा यूनियन पावर है, पावर प्ले है, जो बिना कोर्ट गए किसी के भी करियर पे पॉज लगा सकता है. अब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है. मुझे लगता है कि जिस एक फिल्म और जिन दो तीन लोगों की वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा है, वो चाहते तो बहुत आराम से बैठ के बंद कमरों के अंदर इसको सुलझा सकते थे. बट देन आई डोंट नो व्हाट्स गेटिंग बियॉन्ड ऑल दिस एंड बिहाइंड ऑल दिस, बट मुझे लगता है कि ये मामला जितना जल्दी सुलझ जाए उतना ही बेहतर है. बिकॉज रणवीर इज धू रन समझे
1: आला रे आला सिंबा आला.

0: ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: यार एक बात बताओ, हमने ना आलिया भट्ट को स्क्रीन पर रोते हुए, हंसते हुए, रोमांटिक गाने गाते हुए, पेड़ों के आसपास नाचते हुए बहुत देखा है ना? पर क्या आप सोच सकते हो कि ये भोली भाली प्यारी सी हमारी गंगूबाई अब एक डेंजरस मशीन बनने जा रही है, किलिंग मशीन, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मौत बांटना है। माय गॉड, ये तो साउंड ही बहुत फिल्मी कर रहा है, मतलब दिमाग हिलाने वाली खबर है ये बस। हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, आप सुन रहे मस्ती हैंग आउट। बॉलीवुड में ये जो खबर फैल रही है वो ये है कि अल्फा जो है ना, स्पाई फिल्म अल्फा YRF की, उस पे बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। इस बार आलिया कोई नॉर्मल एजेंट नहीं बनी है, बल्कि वो एक ऐसी खतरनाक असैसिन का रोल प्ले कर रही है जिसे बचपन से सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही बड़ा किया गया है। आलिया को पता नहीं ये इस बच्ची को जिगरा में देखा था, यकीन नहीं हुआ कि किसी को दौड़ते भागते मार सकती है, बट स्टिल यू नेवर नो। आलिया को किसी को मारने के लिए बड़ा किया गया, मतलब वो एक मशीन है जो मारती है, मशीन गन है वो, डेडली मशीन गन है ना, वो ऐसा खतरनाक असैसिन का रोल प्ले कर रही है। इट्स लाइक वेरी एजी और रॉ लुक क्या होता है यार, मैं समझ नहीं पाई आज तक। किल बिल का रॉ लुक कह सकते हैं, रॉ, व्हाट इज अ रॉ लुक, इज शी अ किल बिल, यू नेवर नो। फिल्मों में जब किसी कैरेक्टर को बचपन से किसी वेपन की तरह ढाल दिया जाता है ना, तो उसे कहते हैं द मैन्युफैक्चर्ड वेपन आर्कटाइप। मेरे दिमाग के कैप्सूल से आई है इंटेलिजेंस वाली बात, समझे?
2: व्हाट झुमका, व्हाट झुमका, व्हाट झुमका।
1: आपको क्या लगता है, आलिया इस अवतार में होश उड़ाएंगी या लोग होश गवा देंगे उनको देख के? नहीं, या फिर कहेंगे नहीं यार, कौन सा वाला नहीं आएगा जो बाद में बताना मुझे, पर फिलहाल तो एक गाना आएगा, वो सुन लीजिए आप।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: यार सच बताओ, ये जो मौसम है ना, दोपहर को अगर आपसे कोई कहे कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है, तो मैं तो कहूंगी भाई ठंडा ठंडा रसीला आम, वही काट कर खाने का मन कर रहा है। उसमें जो मजा है ना, वो दुनिया की सारी आइसक्रीम्स और कुल्फीज फेक लगती हैं इसके आगे, एंड फीकी भी लगती हैं, है कि नहीं? ये जो आम को ना कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट्स, एवे नहीं कहते हैं लोग, एवे नहीं लुट जाते हैं इस फ्रूट के पीछे। आपको पता है मुगल एम्परर अकबर जो है वो आम के इतने ज्यादा बड़े दीवान थे कि उन्होंने बिहार में, इंडिया के बिहार में पूरे 1,00,000 आम के पेड़ों का एक बाग लगवाया था। जी, लकी बाग कहते हैं उसको, 1,00,000 पेड़। बहुत सोच रहे हो क्या क्रेजी थे आम के पीछे? तो आप समझ जाओ कि आम के पीछे तो बड़े बड़े बादशाह भी पागल थे। आपको आम खाने का मन कर रहा है ना? आपको अगर वैसा वाला स्वाद चाहिए ना, जैसे अमेजिंग वाला मैंगो देवगढ़ का अल्फांसो है, रत्नागिरी अल्फांसो, तो आपको जीजी मार्ट की वेबसाइट पे जाना है। There's mango season, जी, वहाँ पे सब मैंगो कर रहे हैं इस समय। देवगढ़ अल्फांसो अगर खाना है तो वो आपको मिलेगा ओनली $39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स, एंड रत्नागिरी आपको मिलेगा ओनली $35 पर बॉक्स सिंगापुर, एक ही बॉक्स पर बॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो। और हाँ, अगर आपने $70 के ऊपर ऑर्डर किया है तो आपके घर फ्री डिलीवरी आएगी। तो एज आई से आम के आम गुटलियों के नाम पर को रुको रुको रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देयर इज अ कोड NEW10, न्यू NEW एंड 10, NEW10। तो अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप जब चेकआउट करते हैं जीजी मार्ट ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के, तो उस वक्त ये कोड डालना NEW10 और 10% का डिस्काउंट मिलेगा, समझे? एंड देयर इज वन मोर जैकपॉट। आपने उनकी वेबसाइट पर जाके अगर रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट अगर आपने हमारे साथ शेयर किया 9151893 पर व्हाट्सएप किया उस स्क्रीनशॉट को, तो आपको और अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे। आई हाय, तो बस दिमाग मत लगाओ, आम मंगा।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
4: हाँ जी जी,
3: आधा केजी मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी,
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
3: क्या
4: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
3: वाजी क्या बात जी.
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बॉलीवुड के अंदर से ना एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि बाय गॉड, बॉलीवुड में कोई फिल्म चल रही है और फिल्म की शूटिंग हो रही है। हमने फिल्मों में बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, बड़े बड़े हाइस्ट के बारे में सुना है, पर इस बार की जो चोरी है वो हुई है डायरेक्टर जोया अख्तर के और रीमा काकती के प्रोडक्शन हाउस टाइगर बेबी में। बताओ जरा, पता ये लगा है कि ये कोई आम चोरी नहीं है। आम कभी आम नहीं होते हैं, इट्स ऑलवेज खास, मैंगोज आर स्पेशल। वेल, आम चोरी नहीं है बिकॉज किसी ने उनका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा जो है वो उड़ा लिया। अब इसमें फरहान अख्तर, रणवीर सिंह ऐसे बड़े स्टार्स की ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइल्स हैं इसमें। और शॉकिंग बात यह है कि ये चोरी जो है वो इस डेटा की कीमत है लगभग 13 लाख रुपए। और सुनिए, मसाला यहाँ खत्म नहीं होता है। पता ये लगा है कि चोरों ने सिर्फ डेटा चुराया नहीं है बल्कि उन प्रेशियस हार्ड ड्राइव्स को बाहर मार्केट में किसी को बेच भी दिया है, लाइक 15 से 20 हजार में। पूरी साइबर सेल हिली हुई है इस समय। पुलिस इस मामले की तहकीकात में लग गई है कि आखिर ये अंदर का सेंसिटिव डेटा क्यों, क्या मतलब, क्या चल रहा है। शायद चोर पकड़ में आ गया है, पर अभी ये कबूलनामा बाकी है कि क्यों 15-20 हजार रुपए के लिए। नहीं यार, 13 लाख का तो पूरा ही सामान। खैर, आपको क्या लगता है ये जिस अंदर के बंदे का काम है क्यों किया होगा उसने? गेस करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कुछ सीआईडी को लगाओ काम पे।
2: कर ले जुगाड़।
1: सारे काम मैं करूं।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hi, welcome back. Show की थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। This is me, आपके मुग्धान मस्ती हैंग आउट डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर के हमारे स्टूडियो से। एक बात बताओ, जब भी सिंगापुर में हमारे घर कोई खुशी आती है, कोई त्योहार होता है, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ऑन एयर या फिर ऑफ एयर, हम किसको याद करते हैं टू सेलिब्रेट विद अस? ऑफ कोर्स हमारे मेंबर्स, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट देन हुज नेक्स्ट? ऑफ कोर्स शाही महारानी, एक शानदार शाम। अगर हमें बतानी होती है, अपने परिवार को लेकर कहीं जाना होता है, हमारे हर कदम पर हम जो है वो कहाँ बढ़ा देते हैं अपने हर कदम, एक्चुअली देखा जाए तो शाही महारानी पिछले 25 सालों से रैफल सिटी में अगर देखा जाए तो एक नाम है जिससे हमारी पता नहीं कितनी यादें जुड़ी हैं। हर एक ओकेजन को बिल्कुल रॉयल और बहुत ही यादगार बनाया है शाही महारानी ने। दिस इज नॉट जस्ट अ रेस्टोरेंट यार, हमारे परिवार का हिस्सा है शाही महारानी, हमारे फेस्टिवल्स का हिस्सा है और इसकी मिठाइयाँ हमारे त्योहारों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि ये है ही इतनी स्पेशल। और अब ये मना रहे हैं अपनी ग्रैंड 25th एनिवर्सरी। उन्होंने ना हमारे इस रिश्ते को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए बहुत अमेजिंग सा कुछ तैयार किया है। दे हैव क्यूरेटेड अ वेरी स्पेशल मेन्यू, पता है, एक रॉयल मेन्यू 25वीं एनिवर्सरी पर। बहुत ही प्यारा तोहफा है। उनके सबसे बेमिसाल सिग्नेचर क्लासिक्स जैसे कि चिकन मक्खन वाला, तंदूरी चिकन और पालक पनीर अब आप इंजॉय कर सकते हैं एक सेलिब्रेटरी प्राइस पर जो कि है सिर्फ 25+ सिंगापुर डॉलर्स, राइट? बस पर टेबल आपको 100+ का एक मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना है, डॉलर्स ऑफ कोर्स, और आप इस बात का जश्न उठाइए, लुत्फ उठाइए, जश्न मनाइए। एक्चुअली ये लिमिटेड ऑफर जो है वो वैलिड है 30 जून तक, समझ रहे? और सिर्फ डाइन इन पर है, तो देर मत करिए, shahimaharani.com पे आप जा सकते हैं या फिर आपको उनकी वेबसाइट पे इनका फोन नंबर भी मिल सकता है, दैट इज 6235-8840। आप कॉल करके अपनी सीट्स को रिजर्व करिए, दैट इज 6235-8840। है ना खूबसूरत? बिल्कुल इस आने वाले गाने की तरह।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कभी कभी ना ऐसी पुरानी चीजें सामने आती हैं जो पूरी दुनिया को हिला के रख देती हैं। हाई वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे मस्ती हैंग आउट पर। हम सब ने ना स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई पुरानी पोएम तो जरूर पढ़ी होगी, कोई कहने की बात नहीं है। पर सोचो अगर कोई ऐसी कविता मिल जाए, कविताएं मिल जाए जो लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, तो पूरा का पूरा सिलेबस वापस चेंज करना पड़ेगा यार। बताओ, सदियों पुरानी बुक जो है वो मिली है और कहाँ छिपी हुई थी? छिपी थी तभी तो अब जाके मिली है। रिसर्चर्स को ना रोम के एक मेडिवल बुक के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी इंग्लिश पोयम मिली है। एंड ये कोई आम डिस्कवरी नहीं है, इस पोयम को हजारों साल पहले हाथों से लिखा गया था और ये इतने सालों तक एक लाइब्रेरी के अंधेरे में दबी हुई थी। रिसर्चर्स तो इसको देख के एकदम दंग रह गए कि अब और भी किताबें पोयम वाली याद करनी पड़ेंगी। ओ माय गॉड, बच्चे बेचारे। नहीं, जोक्स अपार्ट, मतलब दंग रह गए कि कैसे उस जमाने के जज्बात आज भी पन्नों पर बिल्कुल जिंदा है भाई। तो लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब कुछ नई पोयम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड होने वाली है। सच में, जोक्स अपार्ट, इतिहास के पन्नों में ना क्या क्या छुपा होता है कोई नहीं जानता। जब वो इतिहास बाहर आता है तो अपने आप बहुत सारी चीजें बाहर आती है।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक बात बताओ, अगर आपका बॉस अचानक आपसे आकर कहे कि अपना रेगुलर काम छोड़ो यार, चलो जरा एक काम करो, तुम सोशल मीडिया पे ना रील्स बनाओ और क्या करो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहोगे दिमाग खराब हो गया क्या है? पर चाइना में एक बॉस ने सच में ऐसा ही किया। एक कंपनी है, उसके सीईओ जो है, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को ना ऑर्डर दिया है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना शुरू कर दें। हैं, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं था। उन्होंने ऑफर दिया है कि जो भी एम्प्लॉय ऑनलाइन 10,000 फॉलोअर्स गेन करेगा, उसे सीधे 1.4 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। मैं जा रही हूँ उस कंपनी में। मैं करूंगी ये। देखो, क्या है ना कि बॉस का ये मानना है कि वर्कर्स के जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, कंपनी की रीच उतनी बढ़ेगी। अब देखो, इसमें फायदा दोनों का है। अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय को बोनस भी मिलेगा, और अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो कंपनी को भी फायदा होगा। तो जब कंपनी को फायदा होगा तो ये अच्छी बात है कि वो अपने एम्प्लॉय को भी फायदा कराएंगे। तो नुकसान बेसिकली यहाँ पे किसी का नहीं है, है? अब वहां पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज तो अब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो चलो चलो चलो फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। ये सोशल मीडिया का जादू हर जगह सर चढ़ के बोल रहा
2: है। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सुलगते।
1: सीरियसली

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: पता है जब भी मैं माइक पकड़ती हूँ ना, हर बार तो मुझे एक थ्रिल महसूस होता है। हर बार ऐसा लगता है ओ माय गॉड मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि माय गॉड दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड हर बार मुझे लगता है यार मैं जो कर रही हूँ दैट्स ऑसम, महसूस होता है यार बहुत ही अमेजिंग सा जो थ्रिल यहाँ पे है ना वो किसी और जॉब में महसूस नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होती होगी। क्या आपको लगता है कि आपके पास वो मैजिक है जो लोगों का दिल जीत सकता है? क्या आपको लगता है कि आवाज में आपके वो दम है कि दुनिया आपको सुने कहीं भी रुक कर? हा? अगर हाँ, Then this is for you. ये मौका आपके लिए है। मस्ती मीडिया नेटवर्क लेकर आए हैं द आरजे अकेडमी, जहां पे आप सीखेंगे अपनी आवाज को कॉन्फिडेंस और इम्पैक्ट के साथ इस्तेमाल करना। देखो एक चीज मैं क्लियर करूं, आवाज अच्छी होती है, आवाज सबकी अच्छी होती है, इट्स जस्ट यू नीड टू नो वेयर टू इनकॉर्पोरेट इट, आपको उसको कहां कैसे कब किस तरह इस्तेमाल करना है ये इंपॉर्टेंट है। हर किसी की आवाज हर जगह काम नहीं करती, लेकिन कोई आवाज बुरी नहीं होती, ये भी बता देती हूं मैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, सबकी अच्छी होती है, बस काम कहाँ कर रही है, आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम आपको सिखाएंगे, जो कि सबको नहीं पता होता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, आपका फ्यूचर भी हो सकता है, इनफैक्ट है। हम ऑफर कर रहे हैं एक हाइब्रिड मॉडल, जहां पे आपको मिलेगा 12 घंटे का एक इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन, स्टूडियो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रेडियो मस्ती 24/7 पर शो लाइव होस्ट करने का मौका मिलेगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये थ्रिल इज द बेस्ट वन। लाइव शो करना जादू है भाई साहब, जादू। एक बार चस्का लग गया ना तो लहू मुंह लग गया, ऐसे वाली हालत हो जाती है। तो बस आपको एक ईमेल करना है info@radiomasti.com.sg पर और अपना करियर शुरू करना है। यस, इससे बेहतर शुरुआत और कहां मिलेगी। एंड विद दिस नोट, हमारा आज का शो यहीं पर खत्म होता है। मौके को जाने मत दीजिए, अपने हाथ से मौका मत गवाइए। यू हैव द बेस्ट वंस टू ट्रेन एंड वी हैव द बेस्ट वंस टू गेट यू ट्रेन। तो चलिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अगले शो में मुलाकात करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही किसी कुर्सी पर बैठकर हेलो हाय करना है, देन दिस इज फॉर यू। बाय।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above, selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning.
6: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
7: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
5: What
4: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
7: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
8: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी,

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट।

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट. Hi, this is Salman Khan, wishing you a very happy Eid Mubarak.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
4: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: सिक्योरिटी फ्यूचर डाउट।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: भाई ऐसे एक खूबसूरत के से गाने के साथ तो शुरू करना ही करना था भाई. सलामत हरी राया हाजी आप सभी को. हाँ जी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. 5 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट. गुड इवनिंग. अब आप कहोगे कि अंतरा तुम किस बात पे खुश हो रही हो, तुम्हारी तो छुट्टी भी नहीं है. बट ठीक है, आपकी तो है ना, तो मैं आपकी खुशी में खुश हो रही हूँ. मैं कल ही बोल के गई थी, मैं इतना ड्रामेटिक तरीके से बोल के सबकी छुट्टी नहीं होती है लक्ष्मण, सबकी छुट्टी नहीं होती है. फिर रियलाइज किया कि इट हिट्स यू ना, कभी कभी आप कुछ बोल जाते हो उसको आप एहसास नहीं करते हो अंटिल एंड अनलेस वो एक्चुअली में आपके साथ, जब आप उस सिचुएशन में होते हो आप लगता है यार कोई नहीं है, कोई नहीं है कमरे में, नहीं इस बिल्डिंग में कोई नहीं है. एंड आप आए हो अपना जो है कार्यभार संभालने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. चलिए भाई, अब जब हम आ चुके हैं, हर कोई आया है सुबह से, जो है एवरीबडी हैज बीन डूइंग देयर टास्क. नूपुर आई थी, फिर मुग्धा आई, उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और 8 बजे तक मैं और आप यहाँ पे एकदम फैंटेस्टिक सा जो है टाइम स्पेंड करने वाले हैं. मिस अतवारो जो है मुझे हैप्पी हॉलीडेज बोल के मेरा वेलकम कर चुकी है. नमक जो है ऐसे ऐसे छिड़का जा रहा है ऐसे कि वो अच्छा ओ उप्स हॉलीडे तो हमारा है. आंसरा वेलकम वेलकम. काम पे आके कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा फील कराने वाली हूं बिकॉज ऑफ कोर्स I've got all the updates and everything. There's so much happening also, right? भाई जहाँ पे एक तरफ RCB जो है IPL में वो finals में पहुंच चुका है, तो वो एकदम क्लाइमैक्स वाले ऐसे moments चल रहे हैं ना IPL में इस time पे, तो वो वहाँ पे चल रहा है. रणवीर सिंह का सप्पा अलग वहाँ पे मोड़ ले रहा है. हर कोई हर किसी एक्टर से यही पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हो इस बैन के बारे में. अब जो फ्वाइस है जिन्होंने बैन लगाया है वो खुद कह रहे हैं, अपना स्टेटमेंट देने के बाद खुद ही कह रहे हैं. Let me not give away everything over here. So I've got all the masala ready for you. So yeah, you just stay there, enjoy the music, enjoy meri baatein, and just chill. Just chill, chill, just chill. Radio Masti 24/7 live par chill nahi, zingaat karenge. Let's go. Good evening.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
4: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं.
5: द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: 5:00 हो चुके हैं, 17 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ड्रॉप के साथ यहाँ पर, और बात करते करते 18 मिनट हो गए हैं. मिडवीक ब्लूज बिल्कुल यहाँ पर चल रहा है. कोई ब्लूज नहीं है किसी की भी जिंदगी में, सब छुट्टी मना रहे हैं. हमसे तो पूछना भी मत, हम आपको सिर्फ बताएंगे आप सुनो. सो वेल, मैं बात कुछ ऐसे कर रही हूँ कि यार ये क्या चल क्या रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में. जो है वो कुछ कर रहे हैं और जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो कुछ और ही करते हुए जा रहे हैं. चाहते क्या है मुझे कुछ ऐसा क्लैरिटी में समझ में नहीं आ रहा है. सो लेट अस स्टार्ट विद इम्तियाज अली. नाउ वी ऑल नो एंड वी हैव सीन इम्तियाज अली और उनका जो काम है, वी हैव रियली अप्रिशिएटेड इट, वी हैव लव्ड इट. उनके गाने भी हम सुनते हैं एंड एवरीथिंग. यार आई थिंक अबाउट आलिया भट्ट इन यू नो हाईवे मूवी एंड आई गो लाइक माई गुडनेस, क्या तो एकदम क्लासिक शानदार मूवी, और उसके ऊपर से क्या खूबसूरत पोर्ट्रेयल ऑफ दैट कैरेक्टर आलिया भट्ट ऑल्सो हैज डन. नाउ रिसेंटली इम्तियाज अली केव इनटू, अब क्या होता है कि आई थिंक मुझे सारी की सारी बातों का ये लगता है कि जैसे ही ये इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद जैसे ही वो कुछ बोलते हैं सब तिलका ताड़ बना देते हैं उस बात का. तो उन्होंने कह दिया, तो हाल ही में एक और, इफ यू डोंट नो, एक वो जो मस्करा वाला गाना आजकल मैं चला रही हूँ, तो वो मैं वापस आऊंगा बोल के एक मूवी के है, एंड इम्तियाज अली की मूवी है इफ यू डोंट नो अबाउट दैट. तो वेदांग रायना जो है उसमें मेन हीरो के रोल में नजर आ रहे हैं, एंड ही जस्ट सेड कि भाई जिस तरह का फील मुझे आया था आलिया भट्ट के कैरेक्टर को लेकर इन हाईवे मूवी, द सेम फील आई एम गेटिंग रिगार्डिंग वेदांग रायना. एंड लोग पागल हो गए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, ऐसा तो है नहीं, वैसा तो वह ठीक है, वो भी हो गया चलो. बट डाइविंग डीप इन टू इट, 2020 का एक रोमांटिक ड्रामा इन्होंने बनाया था लव आजकल 2. 1 वाज प्रीटी डिसेंट, 2 व्हिच हैड कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान, लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट इट, लाइक नो सर, वी वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम इम्तियाज अली, लेट मी पुट इट दैट वे. सो रिफ्लेक्टिंग ऑन इट्स क्रिटिकल एंड कमर्शियल फेलियर जो है, कंपेयर टू सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण वाली 2009 की ओरिजिनल वाली मूवी से, इम्तियाज अली जो है उन्होंने एडमिट भी किया दैट द सीक्वल फेल्ट लाइक दिस प्रोजेक्ट एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी सी लगी टू टेल अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. और ये भी इनिशियली ही सेड दैट यू नो he was excited because he already had the script ready, but the final outcome taught him a major lesson about the project ka viability, ki ye ek kafi useless sa experiment raha. sir, itne saalon baad sir, kyun sir, why, मतलब वो दोनों तो काम कर चुके हैं ना, मूवी तो हो चुकी है ना. आई डोंट नो, मैं कह रही हूं ना जो है वो वैसे, और जो चलते हुए आ रहे हैं वो भी ऐसे, क्या करें हम. हम अपडेट्स ही ले सकते हैं, है ना? गाना प्ले करते रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, स्टे ट्यून्ड।

0: बिले बिले बिले बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: स्टूडियो क्लॉक में बज चुके हैं 5:30। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समय हो चुका है कि आपको बताया जाए कि सड़कों पर क्या चल रहा है और क्या है हालचाल। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स अचांगी आफ्टर लॉली रोड। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन पासर ड्राइव 3 टुवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं लोयांग वे आफ्टर लोयांग एवेन्यू, अवॉइड करें लेन्स 1 और 3। और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन PIE टुवर्ड्स अथवास आफ्टर पायलबार रोड। तो ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक एक बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही। आप सुन रहे हैं मिडवीक ब्लूज छुट्टी वाले दिन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
4: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
5: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
6: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
7: to raise the bar.
8: Ramba.
7: Must be top 20 Bollywood chart busters of the week. Full on Renuka style.
9: Renuka.
6: Friday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
10: 40% off, 40% joy alukas,
11: 40% off, oh my god, let's go, let's go.
12: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
13: Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry, and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ. 5:37 हो चुके हैं. अब स्टूडियो क्लॉक में इंडिया से खबर लेके आई है इस शो पे फिलहाल अंतरा भाई. June 1st से जो इंडियन कैरियर्स है हमारे यानी कि एयर इंडिया और इंडिगो, जब आप हिंदुस्तान जाते हो तो आप इसको अक्सर यूज कर रहे होते हो. जब मैं अमृतसर गई थी तो मैं इन्हीं दोनों को यूज कर रही थी. बट खबर कुछ ऐसी है दैट दे आर गोइंग टू स्केल बैक द डोमेस्टिक ऑपरेशंस फॉर 3 months. यस, June 1st से ये एप्लीकेबल होगा. ये ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि यू नो एयर इंडिया इज सेट टू कट एज मच एज 15% ऑफ द कैपेसिटी एंड इंडिगो जो है 5-7% ऑफ द कैपेसिटी वो कट डाउन करने वाले हैं. द कट्स आर ड्रिवन बाय सोरिंग एविएशन ये जो टर्बाइन के फ्यूअल कॉस्ट है लिंक टू द वॉर एंड सीजनल डिप इन द ट्रेवल पोस्ट स्कूल हॉलीडेज. ये सब मद्देनजर रखते हुए ये एक कॉल लिया गया है. सो या इफ यू आर ट्रेवलिंग टू इंडिया उस टाइम पे तो थोड़ा सा आप देख लें क्योंकि काफी सारे डिस्पाइट ऑफ दिस आल्सो नॉट इवन फ्रॉम June 1st इंडिगो की काफी फ्लाइट्स जो है इंडिया में ऐसे कहते कहते कैंसिल हो जाती है. लाइक आपने बुक की फिर 2 दिन में कैंसिल. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल माय फ्रेंड्स एंड ऑल हु वर ट्रैवलिंग एंड 1 दिन पहले जो है उनकी फ्लाइट अचानक से कैंसिल हो गई. मेरे भाई की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. अब मैं पता नहीं देखता हूँ जैसे तैसे करके मैं पहुंच जाऊंगा. वैसे वाले सिचुएशन हो जाते हैं. तो जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट और इंडिया टू इंडिया में ही डोमेस्टिक कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप छुट्टियों में ट्रैवल करने वाले हो सो जस्ट कीपिंग यू पोस्टेड ओवर देयर. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अरे अरे दिख रहा है मुझे एक बहुत ही अच्छा सा गाना. क्या मूवी थी ये. इट वॉज अ वेरी वेरी चीजी मूवी बट समहाउ वी ऑल लाइक्ड इट. मतलब कहीं दिल के कोने में दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज दैट आपको सीक्रेटली पसंद है बट आप जब बताना नहीं चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं हमको भी नहीं पसंद है. बट या शरारा शरारा या इट्स दिस इज मेरे यार की शादी है और रेडियो वस्ती 24/7 लाइव.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: To Shahi Maharani for the special treat.
5: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
6: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
5: Thank you.
7: Thank you.
6: Thank you.
4: Thank you. We love you.
0: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
1: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
8: Just listening to this Shahi Maharani ka ad jo abhi chal raha tha, it reminded me one of those very very special moments, one of a very actually memorable moments in Shahi Maharani mere saath. वैसे तो कई सारे हैं, but this one moment अभी मुझे याद आया. हम लोग एक team dinner नहीं lunch करने गए थे, and it was just मतलब radio मस्ती की team तो थी ही थी, but उनके हमारे साथ कविता सेठ जी, singer कविता सेठ जी and the actor शिशु शर्मा जी, so they were there and that moment felt so surreal. इतना special लगा था उन मतलब of course celebrities इतने legends है ये दोनों, ठीक है, उनके साथ बैठ कर शाही महारानी जैसी legendary जगह जिसको 25 साल पूरे हो गए हैं खाना, it is just equally important and special and very very close to my heart. So well, कहा ना कि हर किसी की कोई ना कोई memory जो है I'm sure शाही महारानी से जरूर जुड़ी होगी, and there are so many memories people have created over this past 25 years. That is right भाई, 25 years of royal flavors they are celebrating at Raffles City. But $25 plus, that is going to be इनके signature classic dishes जो है उसका price जो ये बिल्कुल एक anniversary special हम सभी के लिए ये लाए हैं. Chicken tikka हो गया, तंजूरी chicken हो गया, chicken makhan wala हो गया, पालक पनीर हो गया, शाही सब्स sizzler हो गया. So if 30th June तक, that's the last date, आप जाते हैं शाही महारानी, आपके table order जो है $100 plus का होता है, then all any of these शाही signature classic dishes order, वैसे तो वो $30 plus above के price पर है, but you will get it at the price of $25 plus. So go and enjoy and relive, make new memories. Not only relive, I think, yeah, नए memories बना कर, I think it is the most royal thing and kind of a thank you to Shahi Maharani for serving us such amazing food for years and years and years. सच्ची में जलेबी उनकी तो मुझे कभी भी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना, इट इज जस्ट शाही महारानी, इट इज वेरी स्पेसिफिक, मेरे को वही की जलेबी चाहिए होती है, एंड व्हाई एम आई, या शाही महारानी जाना जरूर, ठीक है, 6235-8840, दैट्स द नंबर, रिजर्वेशन कराए और जरूर जाएं.

0: बड़ा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: पहुंच गए 6 बजे के उस पार. गुड इवनिंग, नमस्ते. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ. एंड यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है तो वो फिर भी मान लिया जाएगा, क्योंकि आपकी है छुट्टी और ये बंदी आई है यहाँ पर काम कर रही है अपना बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, है ना. बट सिंसियरिटी के साथ तो भाई अपेरेंटली रणवीर सिंह ने भी काम किया था. Now you know what I'm going to talk about. Let us talk about Ranveer Singh and the latest controversy which is going around him. अब हुआ quick recap, ठीक है भाई. Ranveer Singh हमारे exit हुए Dawn 3 से, teaser वगैरह release हो चुका था and then cut to Dawn 3 का pre-production बहुत time ले रहा था. तो Ranveer Singh said कि भाई हमसे नहीं होगा. Then Dhurandhar 1-2 आई and मतलब कमाल कर गई. Everybody now wants Ranveer Singh and now अचानक से अगेन दैट डॉन 3 का कंट्रोवर्सी सामने आता है. एंड वाइस जो कि एक फिल्म एसोसिएशन बॉडी है, वो जो है उनके अशोक पंडित जी जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है तो हमने अब ये तय किया है कि अगर रणवीर सिंह जो है वो नहीं पे करेंगे 45 करोड़ जो कि लॉसेज हुए हैं डॉन 3 में उनके एग्जिट की वजह से, तो फिर ऐसा है कि बैन कर दिया जाएगा कोई भी. हम कुछ ऐसे 4400 प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स हैं, उनको हम कहेंगे कि रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करें. दैट्स व्हाट दे सेड उस टाइम पे, ठीक है. कल से लेकर अगेन रात रात में द स्टेटमेंट हैज सडनली चेंज्ड. अशोक पंडित जी इज सेइंग दैट हमने कब कहा कि बैन कर देंगे, हमने कहा कि कोई भी जो हमारे एसोसिएशन का प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है वो नॉन कोऑपरेटिव होगा, मतलब इनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, बाकी तो जिसकी जो मर्जी. मैं सोच रही हूं कि ये रात रात भर में हो क्या रहा है, ये कहानियां रात रात भर में कैसे पलट रही है, स्टेटमेंट्स रात रात भर में कैसे पलट रहे थे. ये तो सब हमने कोर्ट्स में होते हुए देखा है, अब तो ये इधर भी बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे करके हो रहा है. अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही है. हमारे रणवीर सिंह, आई थिंक रणवीर सिंह हैज चेकलिस्ट है उनके पास कि मुझे ये आई हैव टू गेट डन विद दिस. भाई कांतारा के एक प्रमोशन में उन्होंने या ही एक्चुअली काफी कुछ किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कम्युनिटी के स्पेसिफिक काफी हर्ट कर बैठे थे, तो कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि आपको उनके मंदिर में जाकर जो है भगवान जी से माफी मांगनी पड़ेगी. तो वो वहां पे हाल ही में पहुंचे हुए थे, भगवान जी से उन्होंने माफी मांग ली है. ही इज बैक एंड या नाउ Suddenly everybody is saying कि बैन थोड़ी ना हुए हैं, वो तो बस कुछ प्रोड्यूसर्स और ये है उनसे नहीं होगा काम, बाकी तो वो काम तो जो करना है वो तो करेंगे ही. A lot of people who are standing in support of, there are a lot of articles which are coming out कि कितने सारे एक्टर्स ने इस तरह से चीजें छोड़ी हुई हैं, उनके साथ तो कभी इतना मुद्दा बड़ा नहीं हुआ, तो क्यों रणवीर सिंह का मुद्दा इतना बढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी मूवी इस दौर में 1000 करोड़ मार्क जो है क्रॉस कर गई, इसलिए. आई डोंट नो. गाने सुनते हैं.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: 40% off, 40% joy Alukas.
3: 40% off? Oh my god! Let's go!
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
6: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। The RJ Academy at Musti

0: Media network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।
2: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Our mood change करे।
3: Some kind of controversy, ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेंड सा बनता हुआ जा रहा है। Radio Masti 24/7 live on Trap के साथ 6:00 हो चुके हैं 21 मिनट। भाई कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर पहले रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सी की बात हुई थी, तो एक और एक्ट्रेस हैं जिनकी मूवी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, उनकी कंट्रोवर्सी पे आते हैं। अनन्या पांडे, दैट इज राइट, चांद मेरा दिल जो है नाम की ये मूवी, जिसमें वो मूवी याद है आर्यन खान ने डायरेक्ट की थी अभी थोड़े टाइम, मूवी भी नहीं वो सीरीज थी बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो उसमें लक्ष्य बोल के ये बंदा इन्होंने लॉन्च किया था। गुड बंदे में स्टाइल है, स्वैग है, कूल है, दिखता अच्छा है, आवाज अच्छी है, तो या बेसिकली ये मूवी उतनी ज्यादा चली नहीं, लेकिन हाँ अब बहुत ज्यादा अटेंशन उस पर जरूर आ चुका है। व्हाई? बिकॉज एक सेक्शन है जहां पे अनन्या पांडे जो है स्टेज पर भरतनाट्यम जो है वो परफॉर्म कर रही है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि बहुत सारे लोग जो सी दिस इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स जिसमें बहुत लाइक इट नीड्स, एनी आर्ट फॉर्म नीड्स डिसिप्लिन, काफी रियाज और जो रिस्पेक्ट एक है उसकी, एक औदा है उस आर्ट फॉर्म का। But this classical dance form, yes. So a lot of people they started, and all of these are trained dancers. Like सालो सालो से उन्होंने आराधना तपस्या कर रखी है इस आर्ट फॉर्म के लिए, लिटरली उनकी पूजा करते हैं। सो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इस आर्ट फॉर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। सी क्लियरली शी इज नॉट अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, सो ऑब्वियसली शी डिड नॉट यू नो डू दैट मतलब परफेक्टली वेल। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज वन पार्ट ऑफ द इंटरनेट हु इज काइंड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अनन्या पांडे। चंकी पांडे उनके पिताजी जो है वो भी बीच में आ गए, कह रहे भाई यू गाइज आर जस्ट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हर। शोभा दे जो ऑथर राइटर है, शी हैज कम आउट इन सपोर्ट ऑफ अनन्या पांडे एंड उनके भरतनाट्यम फ्यूजन डांस को। उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग अनन्या, why only she is being targeted when she is not a trained classical dancer? She also said that actors often face immense pressure to perform difficult dance forms and should be appreciated for their effort instead of getting constantly trolled online. Baat to ma'am aapne sahi kahi hai, but ab this is, it is what it is right now. Chalo, I think is bahane people are going back and watching Chand Mera Dil कि ये कौन सा वाला सीन था जिसकी वजह से इस मूवी को इतनी अटेंशन मिल रही है इस बात में, कंट्रोवर्सी में। नहीं, पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। लिसन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, उस मूवी का गाना जो अक्सर मेरी प्लेलिस्ट होती है इन द जिम,

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
1: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at ShahiMaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: Traffic update.
7: चले सड़कों पर और पता करते हैं इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। 6:31 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन सेंट्रल एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स एवाईई आफ्टर ओट्रम रोड और रोड वर्क चल रहे हैं ऑन सीटीई टुवर्ड्स एसएलई एट यूचुकांग रोड एग्जिट। भाई यही है ट्रैफिक अपडेट इस घंटे का। और उसी के साथ साथ बताइए कैसी गई आज की छुट्टी। ये मिड वीक की छुट्टियां भी कितनी हसीन लगती होगी ना, है ना। मतलब ट्यूजडे शाम को ही ऐसा एकदम फील आए, ओ कल तो अलार्म के साथ नहीं उठना है, कल तो आराम के साथ उठना है, और पूरा दिन कुछ नहीं करना है। और फिर वेंसडे शाम को जो है आपकी फीलिंग वो वाली आ जाएगी जो हमें संडे शाम को आती है कि अरे कल तो वापस काम पे जाना है। दिस इज फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव जस्ट टेकन आज का जो नॉर्मल प्रॉपर छुट्टी है ना। देन देर आर धुरंधर्स। वो आर दोस धुरंधर्स जिन्होंने बहुत पहले से देख लिया होगा कि ओ लिस्ट बाहर आ चुकी है नेशनल हॉलीडेज की, ओके वेंसडे को पड़ रहा है ओ एक छुट्टी, और एक छुट्टी उसके बाद वाले मंडे को भी है। मामला परफेक्ट है बॉस, यहाँ पर एक छुट्टी प्लान की जा सकती है ना, है ना। दिस इज क्लियरली आई एम नॉट दोस वन ऑफ दोस धुरंधर हॉलीडे प्लानर्स, या बिकॉज आई एम हियर विथ यू एंटरटेनिंग यू दिस इवनिंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर चेंज कर
1: हम भी यहाँ पर जय हो बोल रहे हैं 40% डिस्काउंट देखकर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज. ब्लूज आएंगे कहाँ से अगर जोहलगास यानी कि वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर इस तरह से हमारे सामने 40% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस लेकर आएंगे. देखिए एक तो ऐसे ही हमारी मिडिल क्लास वाली आत्मा जो है डिस्काउंट का नाम सुनते ही हमारे ऐसे एकदम स्माइल सी आ जाती है, उसके ऊपर से कोई 40% और लगा दे तो फिर मतलब लगता है कि ओ वाओ ये नाउ यू आर टॉकिंग. क्या है जरा मुझे ध्यान से बताना, तो मैं ध्यान से बता रही हूँ. सो दिस इनक्रेडिबल फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड डायमंड पोलकी एंड प्रेशियस ज्वेलरी मिल रहा है आपको द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल में ऑफ जोहलगास. दैट इज करेक्ट, वही जोहलगास जिनकी वैरायटी जो है दैट इज इनसेन. ओके इट्स कमाल की. चाहे आप उनके किसी भी 320-412 किसी भी आउटलेट में चले जाएं सरगुन रोड पर, दे इट्स जस्ट सो गुड राइट. एंड आई थिंक ज्वेलरी शॉप की एक वाइब होती है एंड जोहलगास की जो ज्वेलरी शॉप की वाइब है दैट इन इटसेल्फ इज लाइक आप एक बार एंटर करो ऐसे ही मूड के साथ कि चलो देखते हैं ऐसे ही देख के आ जाएंगे. ना हो ही नहीं सकता, यू विल एंड अप लाइकिंग समथिंग विच इज अ गुड थिंग. ओके त्योहारों का सीजन आए इससे पहले थोड़ी सी प्लानिंग इन्वेस्टमेंट अभी एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड. तो ये जो इनका ज्वेलरी सेल है जी हाँ चल रहा है 14 जून तक, ये याद रखे. सो या थोड़ा सा जल्दी इनके इजी पेमेंट प्लान का लाभ उठाएं और उसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो गेट 100% वैल्यू ऑन डायमंड एक्सचेंज एज वेल. बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही कमाल की बात कर दी इन्होंने, वाह. टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली आर अप्लाइड. सो जाए जोहलगास गहने मैंने खरीदे और हमें बताए, नहीं नहीं हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद रखे और देख देख के खुश होते रहे. दैट्स व्हाट आई डू. या बार बार निकाल के मैं जैसे लोग बार बार जाके अपनी स्टोरीज देखते हैं ना खुश होके, दैट हैपेंस विद मी एंड माई ज्वेलरी. दो आई बाय वेरी मतलब कुछ कुछ ही, बट देन इट इज जोहलगास आफ्टर ऑल यार, बार बार देखना तो बनता ही है ना. गुड इवनिंग.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
5: क्या जी?
6: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाह जी क्या बात जी।
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
7: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटल एंड वाइब अ लॉट बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिड वीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: ये जो लाइफ है ना, लाइफ कैसे स्टेजेस में निकलती है ना, और हर स्टेज की एक अपनी अपनी इनसिक्योरिटी होती है और उस चीज को हम बहुत ज्यादा संभाल के प्ले आउट करते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में हूं अंतरा आपके साथ। मिडवीक ब्लूज में लेट्स टॉक अबाउट यो हनी सिंह। He has had his own fair share of उनका जो है सेलिब्रिटी मोमेंट जो उन्होंने जिया, बट देन A lot of things happened with him. ठीक है, उन्होंने जब वो बहुत ही ज़्यादा famous थे, वो उस time पे he was very conscious about everything and you know सब कुछ किया उन्होंने, including whatever you can think about it. But then he was diagnosed with bipolar. जो है उनके mental health battle के बारे में he has talked about it quite a lot. But now he is उस life के stage में when where he doesn't care about much, he is so honest and true and he's just out there, he is sharing unka journey aur unhone kya learning li isse. Ab unko ye bhi fark nahi padta, unhone actually mein bahar aake ye keh diya hai ki I have no hair. He's Yo Honey Singh is completely bald, by the way. Yep, that is the recent revelation he has done and everybody is talking about it. So he shared that prolonged medication jo hai for his bipolar disorder, usse unko severe hair loss hua, leaving him completely bald. And kehte hai ki jo aap abhi dekh rahe hain, this is just a wig. While reflecting on all the difficult years he has spent in battling the mental health issues and the substance abuse away from the public eye, and ye jo hai कभी कभी बहुत मुश्किल होता है किसी को देख के या समझना कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। नहीं, इनफैक्ट उन्होंने एक और बड़े उस मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने रिवील की। जब उनका ये फेज चल रहा था बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो कह रहे मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि शाहरुख खान के साथ इनको अमेरिका का टूर करना था। And he revealed that he was so terrified उस time पे because of his disorder that he actually shaved half of his head just to avoid performing on stage. Yeah, it was that bad. So well, कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम किसी पे ऐसे comment करके निकल जाते हैं, you really don't know what that person is going through, right? तो थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए किसी के भी बारे में, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ, है ना। आता माझी सा टकली, yeah. That is the गाना coming up next. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी मतलब गाना, या लेट्स गो, यो हनी सिंह का नाम आया, मैंने कहा ये वाला गाना प्ले करते हैं। अब छुट्टी वाले दिन आकर ये वाला गाना तो प्ले कर ही सकते हैं। नहीं, गुड इवनिंग।

हाँ जी, तो बस ये घंटा करते हैं रैप अप। 7 बजे के उस पार आपको मिलेंगे हमारे आरजे जितेश विद आईपीएल के हाइलाइट्स, एंड देन ऑफ कोर्स आई विल बी राइट बैक आफ्टर दैट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, स्टे ट्यून्ड।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Stadium mein goonj uthi awaaz. Reading goal ka hai andaaze. Har dil mein bas ek hi naam.
2: RCB, RCB.
1: Come on.
2: RCB.
3: Namaste, adab, sat sri akaal, and a very warm welcome to the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live. मुझे पता है दोस्तों, यू आर एंजॉयिंग द रेडियो मस्ती शो जो अभी चल रहा है, बट राइट नाउ इट्स आईपीएल हाइलाइट्स टाइम एट द क्रिकेट कॉर्नर विथ मी, आपका होस्ट और दोस्त जितेश, जो लेके आता है डेली आईपीएल अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे. तो कल था आरसीबी डे इन आईपीएल, कल था आरसीबी के बैटर्स का डे इन आईपीएल, और यही नहीं, कल था आरसीबी के बॉलर्स का भी डे इन आईपीएल. जी हाँ, एक्चुअली में कल सिर्फ आरसीबी का ही डे था, और यही नहीं, कल आरसीबी के सेलिब्रेशन का भी डे था, व्हेन द डिफेंडिंग चैंपियंस क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स अगेन इन दिस ईयर्स 2026 आईपीएल. तो मैच की बात करें तो कल मंगलवार के दिन तब अमंगल हो गया जीटी के लिए. जीटी ने टॉस जीता और कैप्टन गिल ने बोला, वी विल बोल फर्स्ट एज द ड्यू फैक्टर विल कम इन टू द प्ले इन सेकेंड इनिंग्स. बट However, परंतु ड्यू नहीं आया, आया रजत पाटीदार फैक्टर, और वो भी पहले इनिंग्स में. द आरसीबी कैप्टन स्कोर्ड एन अनबीटन 93 ऑफ 33 बॉल्स विथ 9 सिक्सेस सपोर्टेड बाय कृणाल पांड्या 43 ऑफ 28 बॉल्स एंड विच टर्न आउट टू बी अ डिसाइसिव पार्टनरशिप फॉर आरसीबी विच प्रोपेल देम टू अ मैमथ 254 फॉर 5, द हाईएस्ट एवर टोटल इन अ नॉकआउट इन आईपीएल. And earlier, Kohli got to his 600 runs for the season with a classy knock of 43 of 25 balls with support from Padikkal 30 of 19 and a quick fire start from Venkatesh Iyer scoring 19 of just 7 balls. GT ke bowlers ke baare mein kuch na hi bola jaye to acha hai. As the best bowling side were torn apart by RCB. Isiliye kuch bolna ka fayda bhi nahi. In reply, Gujarat Titans lost 5 wickets in power play with a splendid performance by Bhuvneshwar Kumar, who is leading the purple cap with Duffy and rest of the bowlers, and they were totally outplayed and bundled out for 162 in 20th over, losing by a mammoth 92 runs. The performance to be mentioned was Rahul Tevatiya, 68 of 43 balls, but I think that was the only performance which GT managed yesterday. So with this win, RCB are into the finals and GT gets another chance to play against them in the eliminator winner SRH versus RR tonight. I hope GT wins that game because then the final will be at Ahmedabad and everybody knows GT's record at their home ground at Ahmedabad. But till that time, fingers crossed for all GT fans. For full breakdown of these matches, watch me with Santosh, Neil on Musti AVI every Monday and Friday 8:30 PM, and during the last week of IPL, we'll be covering the knockout games on Wednesday and Sunday as well. Go to the Musti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere. Main hoon Jitesh, hum kal 7 baje fir milenge with more masala, more cricket, more IPL action. Only on Radio Musti 24/7 Live. And now, dosto, back to your show. You were enjoying. But remember, IPL dekhte rahiye. Aur khas taur pe aaj ka eliminator, SRH versus Rajasthan.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: Well, well, thank you so much, Jitesh, for the IPL highlight. It's just getting better and crazier by the day. Well, वो तो है ही है, but उसी के साथ साथ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर की पूरी टीम आप हमारे जितने भी मुस्लिम लिस्टनर्स हैं उनको बिल्कुल विश करना चाहती है ईद मुबारक, सलामत हरिया हाजी, and for everyone else, hope you enjoyed आज की छुट्टियां. अभी थोड़ी देर पहले सपना आंटी आगे कह रही थी कि पता नहीं संडे वाली फील आ रही थी इसलिए मैं भूल गई. मैंने कहा सभी यही फील कर रहे हैं सिवाय हमारे जिनको एक्चुअली में हम रियलिटी में जी रहे हैं कि आज है वेंसडे 27th ऑफ मे. बाय द वे लेट मी टेल यू कि ये महीना भी जो है खत्म होने को ऑलमोस्ट आया है, जस्ट इन केस. कभी भी होता है ना एकदम अचानक से स्ट्राइक करता है, क्या बात कर रही हो भाई, वही वाला जो सीन है. वेल कमिंग टू हमारे शाहरुख खान, आई थिंक धीरे धीरे वो भी इन एक्शन आ रहे हैं. उनकी मूवी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंसेंबल स्टारकास्ट के साथ काफी चर्चा में रही है, दैट्स किंग, उसके बारे में जो है धीरे धीरे बातें बढ़ती हुई जा रही है. बट हियर्स अनदर वन, शाहरुख खान जो है, रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, इज सेट टू रीयूनाइट विद कॉमेडी के लेजेंड जॉनी लीवर साहब आफ्टर आई थिंक 11 इयर्स. एक कॉमेडी फिल्म आ रही है ऑपरेशन ऑपरेशन, उसके लिए सो एसआरके जो है ही विल मेक द स्पेशल कैमियो अपीयरेंस इन द मूवी, काइंड ऑफ एडिंग एक्साइटमेंट. जितने भी फैंस हैं उनके हु हैज लव्ड देयर आइकॉनिक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इन द पास्ट, नाउ यू टेल मी, ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट जॉनी लीवर साहब एंड शाहरुख खान, कौन सी मूवी में जो है सबसे पहले आपके जहन में आता है? आई हैव अ मूवी राइट देयर वेयर जॉनी लीवर साहब का एक बहुत ही फोन वाला डायलॉग, इट इज जस्ट एपिक एंड इट्स अ 90s मूवी, दैट इज फॉर श्योर. बट ये दोनों काम कर चुके हैं साथ साथ में, दे हैव गिवन अस अमेजिंग अमेजिंग केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन एज वेल. ये जो स्पेशल अपीयरेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कम्स बिफोर शाहरुख खान एक्चुअली बिगिंस द मेजर फेज ऑफ हिज मच अवेटेड एक्शन फिल्म किंग. अब जो है देखते हैं कि अब एसआरके और क्या क्या हमारे लिए, वॉट ही हैज इन स्टोर फॉर अस, बट देन डेफिनेटली ही इज गियरिंग अप, कुछ तो आने वाला है बॉस, है ना. एक चीज जिसकी डेफिनेटली मैं श्योर हूं वो आने वाला है, वो कल, कल जब आएगा तो मस्ती 90s मिक्स टेप लाएगा. एंड आपको पता है ना कैसा होता है, मेरे हाथ में ऐसे ऐसे होने लगता है वेंसडे को प्लेलिस्ट में चला जाता है 90s की तरफ, क्या कर सकते हैं, इतना अच्छा गाना है सत्या मूवी का, है ना. तो मैंने सोचा कि छुट्टी वाला माहौल है, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पंप अप किया जाए, लेकिन एकदम 90s देसी स्टाइल में, लेट्स गो.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Thank you to Shahi Maharani for the special treat.
2: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
3: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
2: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you.
1: Thank you. We love you.
5: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi signature veg and non-veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
6: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
7: कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या ही मिल जाता है इन इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जो है शान पंती दिखाने के लिए, और वो भी उसके बाद सोशल मीडिया पे डालकर खुद ही के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। सर, ऐसे ही होता है आजकल तो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर चल रहा है मिड वीक ब्लूज। भाई ब्लूज तो इन भाई साहब इन्फ्लुएंसर भाई साहब के पास फिलहाल आए हुए हैं। इनका नाम है सार्थक सचदेवा, एंड सो यू नो देर आर टाइम्स इन वेन वी आर यंग, सो हम ना अपना टशन दिखाना चाहते हैं। हमारे कानपुर में कहते हैं भौकाल, है ना, उसको मतलब जब बे इंतहा एकदम बहुत ज्यादा वाला टशन आपको आ रहा हो ना अंदर से, तो उसको कानपुरिया लैंग्वेज में भौकाल बुलाते हैं कि भाई इसका तो भौकाल ही अलग है। सो इनको भी आया हुआ काफी ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, ही फेक्ड अपना हैंड इंजरी, उसके बाद ये गए एयर इंडिया के काउंटर में और इन्होंने पूछा कि इफ ही कैन गेट अ फ्री अपग्रेड टू फर्स्ट क्लास, क्योंकि इनकी इंजरी है। एयर इंडिया ने अपग्रेड भी कर दिया, बिजनेस क्लास में प्रीमियम सीट मिली, कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिला। उसके बाद भाई साहब ये बाहर आए और सोशल मीडिया पे इन्होंने जाके ऐलान किया ये तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। अब भाई अब बाकी जो जिन्होंने इनका सोशल मीडिया पोस्ट देखा कहते ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। एंड देन पीपल स्टार्टेड राइटिंग, इफ पीपल स्टार्ट डूइंग दिस एंड स्टिल गेट रिवॉर्डेड, मेनी अदर्स विल कॉपी इट एंड एयरलाइन स्टाफ मे स्टॉप ट्रस्टिंग रियल पैसेंजर्स हु एक्चुअली नीड हेल्प। एंड या द एयर इंडिया शुड चार्ज हिम फॉर द अपग्रेड एंड मेक इट क्लियर कि ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड पता नहीं क्या क्या लाइक कॉमेंट सेक्शन इज जस्ट कुछ तो कह रहे हैं, इसको नो फ्लाई लिस्ट में ही डाल दो, सब समझ में आ जाएगा। सारी सोशल मीडिया का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सब सारे का सारा उनका रिजल्ट में आ जाएगा। सी दिस गाय इन्फ्लुएंसर हूएवर ही इज, ही गॉट ओके ऑल द अटेंशन फॉर मे बी नॉट अ गुड रीजन व्हाटएवर, बट देन इवन आई फील दैट दिस इज नॉट ओके। Why would you do such thing? अगर तुमने कर भी दिया है तो ये बात तो अपने तक रखने वाली थी ना, ये बताने वाली थोड़ी ना थी। कभी कभी मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को अपना प्रॉब्लम बना देते हैं ये लोग। बट एनीवेज, वेल रेडियो बस्ती 24/7 लाइव पर मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जुबान तक आते आते मुझे लगता है कि नहीं अंतरा नहीं बोल सकते हैं ये सब, यू कैन नॉट, एंड देन आई गो लाइक ओके लेट्स प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।
4: all night. Wanna nudge all night. Do you feel alright? Wanna nudge all night.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning!
6: 40% off, 40% joy alukas,
7: 40% off, oh my god, let's go.
8: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
9: Joy alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
10: Baju.
11: Traffic update.
1: 7:41 हो चुके हैं, स्टूडियो क्लॉक में आइए आपको तुरंत के तुरंत बताया जाए कि सिंगापुर की सड़कों का फिलहाल क्या है हाल एंड चाल। आई थिंक एवरीबॉडी इज टेकिंग इट वेरी चिल्ड आउट। स्टेशनरी व्हीकल की खबर है ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई एट पोंगोल रोड एग्जिट, और व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा ऑन टीपीई टुवर्ड्स पीआईई आफ्टर केपीईसीपी। सो वेल, ये वो वक्त है जब हमें तो नॉर्मल लग रहा है कि हमारे लिए वेंसडे है, कल हमें वापस आना है, हम थर्सडे वाले जो है उसमें हमको पता है कि कुछ वियर्ड फील नहीं होगा, बट आपको हो रहा होगा ना छुट्टी के बाद वाले दिन? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, टू लेट मी नो 9158963 व्हाटएवर इट इज। आई होप यू स्माइल थ्रू इट जस्ट लाइक द सॉन्ग कमिंग अप नेक्स्ट।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज.
1: इतनी सी हंसी और इतनी सी खुशी तो आम को देखकर भी आ ही जाती है. मौसम जब सीजन में हो और आप उसको रिलिश कर पा रहे हो तो उस खुशी का कोई अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते. नहीं, आप लगा सकते हो बिकॉज यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट. बट देन आपने ये सुना भी है कि काफी टाइम से हम सभी आपको कह रहे हैं कि वी हैव बीन हैविंग दिस रियली रियली गुड क्वालिटी मैंगोज ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, एकदम प्रिजर्वेटिव फ्री, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक. एंड जीजी मार्ट ऑनलाइन इज अमेजिंग. एंड you have been listening to testimonials also, right, of people telling that kaise unka matlab us aam ka ek bite aisa laga ki teleport ho gaye seedha India mein. ab kahan matlab Singapore mein baithe baithe jab aapko koi ek aisi itni khoobsurat si baat ko offer kar raha hai to aise offer ko mana nahi karte hain. क्या करते हैं, ggmartonline.com जाते हैं, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं. और चाहे आप न्यू 10 कोड यूज करें या फिर स्क्रीनशॉट भेज के हमसे कोई कोड लेकर वो डिस्काउंट अवेल करें, बट जरूर एक बार ggmartonline.com से आम जरूर ऑर्डर करें. ऑप्शन आपके पास है कि चाहे आप रत्नागिरी के आम पसंद करते हो या देवगढ़ के आम पसंद करते हो, दैट इज अल्फांसो, तो मतलब बट डेफिनेटली टेस्ट की पूरी गारंटी है कि बहुत ही कमाल के आम है. इफ यू हैव नॉट ट्राइड यू शुड एंड यू मस्ट. सो इंतजार किस बात का? ओ अच्छा, कैसे? जस्ट टाइप करना पड़ेगा, दैट्स ऑल. एंड देन वंस यू गो ओवर देयर यू विल फाइंड दैट इट इज मच मोर देन ओनली आम. जितनी भी तरह के ग्रोसरी के आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के. एंड देन इट गेट्स डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप. मतलब ये वाला चीज तो हम सबको अब आदत पड़ ही चुकी है, राइट? एंड वी फाइंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो या, it's so easy with ggmartonline.com. Yaad rakhiyega, warna main yaad dilane ko to wapas aa hi jaungi. Let's go for a break.

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: और उसी बात के साथ अब वो वक्त आ चुका है जब मैं यहाँ से बाय बाय करूंगी, क्योंकि इसके बाद जो है मेरी जिंदगी तो रूटीन पे ही चल रही है। अब जाएंगे हम जिम, थोड़ी सी कसरत करेंगे और कसरत करके कल वापस से हाजिर हो जाएंगे विद अ नॉर्मल थर्सडे, जहां पर आपसे मुलाकात होगी मेरी मस्ती 90s मिक्स टेप को लेकर। दैट इज राइट, बट आप सुबह से ट्यून इन कर लीजिएगा बिकॉज मस्ती मॉर्निंग्स लेकर हमारी आरजे नूपुर आएंगी। ऑफकोर्स आफ्टर दैट आई विल कम एंड देन आरजे मुग्धा विल बी देयर टेकिंग केयर ऑफ यू एंड योर एंटरटेनमेंट शाम के टाइम पर। बट फिलहाल के लिए आई होप यू रियली हैड अ गुड हॉलीडे टुडे, जिन्होंने और कुछ प्लान कर रखा है एक्सटेंडेड वीकेंड सोच के, तो आपके लिए भी वेरी वेरी गुड। एंड जो नॉर्मली हमारे तरह जो काम किए और जिन्होंने अपने एरन्स रन किए, एवरीबडी जस्ट आई होप यू ऑल रियली रियली हैड अ चिल्ड आउट एंड अच्छे से रेस्ट किया हो, एंड यू नो you would have spent time with your family and all. So, wrapping it up, a beautiful gaane ke saath, Aatif Aslam ki awaaz, and I'll see you tomorrow. Bye-bye, take care, good night.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: लिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एकदम सही बात है ना ये। अगर आप ना होते तो ये शो कैसे होता, और अगर ये शो ना होता तो आपकी और हमारी मुलाकात कैसे होती। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। मैं हूँ समर, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन पर, जिसका नाम है रेडियो मसी 24/7 लाइव। और शुरू हो चुका है यादों का कारवां, जो बॉलीवुड के गुजरे दिनों की यादों को ताजा करेगा, उन्हीं गलियों से होकर गुजरेगा। आज हम शुरू में किसकी बात करें, चलिए अगर तुम ना होते की बात कर लेते हैं। जी, 1983 में ये फिल्म आई थी। लेख टंडन के निर्देशन में ये फिल्म बनी। राजेश खन्ना साहब इसमें मेन लीड में थे, और उनके साथ थी रेखा। रेखा डबल रोल में थी, राज बब्बर के साथ भी थी वो, और राजेश खन्ना साहब की भी हीरोइन थी। मदनपुरी थे, और असरानी की अदाकारी भी कमाल की थी इस फिल्म में। काफी मेलोड्रामेटिक फिल्म थी, और इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक था अगर तुम ना होते, उसका तो क्या कहिए। किशोर दा की आवाज मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में परवान पर थी। बहुत जल्दी छोड़कर चले गए वो हमें, क्योंकि अब टेक्निक्स नई नई डेवलप हो रही थी और आवाज का निखार ज्यादा खूबसूरती से सुनाई दिया करता था। लेकिन अफसोस के इसके 3 साल बाद ही किशोर दा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। खैर, फिलहाल इसी गाने पर वापस आते हैं। ये जो गाना है अगर तुम ना होते, ये गाना वैसे लता जी ने भी गाया है और किशोर दा ने भी गाया, लेकिन किशोर दा ने जो गाना गाया उसके लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। ये उनका 6th फिल्म फेयर अवार्ड था एज ए प्लेबैक सिंगर। इस गाने को लिखा था गुलशन बावरा जी ने, और आरडी बर्मन का कमाल का दिल को छू लेने वाला म्यूजिक था। बड़ा सुकून देता है गाना। अब ये नहीं कहूंगा कि कभी सुनने का मौका मिले तो सुनिएगा जरूर, आज ही सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किशोर दा को तो मिला ही था ये अवार्ड, साथ ही राजेश खन्ना साहब को उनके दमदार अभिनय के लिए स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एक्टिंग मिला था इसी फिल्म के लिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि राजेश खन्ना साहब का स्टारडम जब गोते लगा रहा था तो ये फिल्म एक सहारे के तौर पर उनके लिए आई थी। बहुत बड़ी हिट थी ये फिल्म अगर तुम ना होते। चलिए इसी फिल्म का ये टाइटल ट्रैक सुनते हैं, और उस दौर के कुछ और गानों के बाद मैं लौटता हूं। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off. Oh my god. Let's go. Let's go.
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
3: वेलकम बैक एक बार फिर से समर आपके साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ दिया, फैशन, स्टाइल, कहानियां, नए नए आइडियाज, इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और अब वक्त है बॉलीवुड को उसका दिया हुआ अर्पण करने का। जी जैसे तेरा तुझको अर्पण, बस वैसे ही बॉलीवुड की ये जो खूबसूरत कहानियां थी, ये फिल्में थी, ये नगमे थे, ये संगीत था, उसी को हम याद कर रहे हैं, उसी को। तो एक तरह से ये उस गुजरे जमाने को ट्रिब्यूट है, यादों का कारवां। चलिए अर्पण से मुझे याद आया कि अगली फिल्म जो मेरे इस पैनल पर मुझे दिखाई दे रही है वो अर्पण ही है। और अर्पण का वो गाना, मोहब्बत में धोखा मिला हो किसी को और महबूबा सामने देख जाए तो बरबस ही होंठों पर आ जाता है, कौन सा? अरे भाई जिसमें दिल का दर्द बयां हो जाता है वो गाना। हंसने मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, बहुत बढ़िया इसके वर्ड्स हैं और अनवर हुसैन साहब की आवाज है, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का बड़ा प्यारा सा संगीत। जितेंद्र साहब पर पिक्चराइज है गाना, जितेंद्र एक होटल में गाना गा रहे हैं और जितेंद्र ने इस गाने में जो टी शर्ट पहनी है वो विदाउट कॉलर टी शर्ट है और ये उस वक्त के फैशन में आ गई थी। इससे पहले कॉलर टी शर्ट ही पहनना पसंद किया करते थे लोग। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये जो जी ओम प्रकाश साहब हैं ये ऋतिक के नाना जी लगते हैं और राकेश रोशन साहब के ससुर जी हैं। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी अर्पण, बहुत ही बढ़िया ये फिल्म थी। जितेंद्र, रीना रॉय, परवीन बाबी और राज बब्बर के अभिनय से सजी ये खूबसूरत फिल्म है, बहुत ही उम्दा कहानी है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखेगा। खासतौर से रीना रॉय फेबलेस लगी, बहुत ही कमाल एक्टिंग भी जबरदस्त की उन्होंने। और इस फिल्म का एक और गाना, परदेश जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया, ओए होए, हर महबूबा का ये पसंदीदा गाना होता है, खास तौर पे जब उसका चाहने वाला ऐसे सात समंदर पार आ जाता है। वैसे सिंगापुर कितने समंदर पार है इंडिया से? शायद एक तो समंदर पार होगा। खैर फिलहाल तो इस फिल्म का एक और गाना जो बेहद हिट हुआ वो था जो विदाई सॉन्ग है पंजाबी, असा हुण तुर जान आए दिन रह गए थोड़े, ओए दिल चीर लेता है, लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े, असा हुण तुर जान आए, लेकिन मैं भी जान ही रहा हूँ मैं वापस आऊंगा। इन बेहद खूबसूरत नगमों के बाद आप सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

वेलकम बैक, मैं हूँ समर और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां। 80s में एक दौर ऐसा आया था बॉलीवुड में जब इंडिया में साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक बहुत ज्यादा बन रही थी और उनमें श्रीदेवी, जयाप्रदा और जितेंद्र का ही कॉम्बिनेशन देखा जाता था। अब इस तरह की फिल्मों में जो गाने हुआ करते थे वो भी अलग तरह की वर्डिंग्स के साथ हुआ करते थे, जिनका जरूरी नहीं है कोई अर्थ हो, लेकिन बड़े रिदमिक वर्ड्स हुआ करते थे वो और बड़े कैची शब्द हुआ करते थे। गाने इंस्टेंटली हिट हो जाया करते थे और उसकी कई वजह थी, जैसे कि उसका कॉम्पोजिशन बहुत कमाल का हुआ करता था और साथ में अगर किशोरदा की आवाज उसे मिल जाए और आशा जी उसको गा दें तो फिर गाना हिट होने से कौन रोक सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उस गाने की जिसने उस जमाने में धूम मचाई और जब भी रिविजिट किया तब भी उसका सिक्का चला। ये वो गाना है जिसने सिनेमा हॉल में सिक्कों की बारिश करवा दी थी और डांस नहीं जानने वाले लोगों ने भी इस पर खूब डांस किया। गाना कौन सा? हाँ वही, ओ ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी। हिम्मत वाला का ये गाना बहुत ही कमाल का गाना, आज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस वक्त ये थोड़ा सा चीप सॉन्ग लगा करता था, लेकिन गाना हिट था और इसी गाने की वजह से फिल्म भी हिट हो गई थी। हिंदीवर के बोल थे, बप्पी लाहिड़ी का म्यूजिक था और किशोर दा और आशा जी की आवाज थी। जहां तक हिम्मत वाला की बात है तो आपने ये जो अभी नई वाली हिम्मत वाला देखी है, शायद देखी होगी, अजय देवगन वाली, ये उसी फिल्म का रीमेक तो है हिम्मत वाला का। एक्शन कॉमेडी और फैमिली ड्रामा से सजी ये फिल्म, जिसका डायरेक्शन किया की राघवेंद्र राव ने और इस फिल्म में जितेंद्र, श्रीदेवी, कादर खान, अमजद खान, वहीदा रहमान और शक्ति कपूर ने अभिनय किया था। दूसरा इस फिल्म का एक गाना था, ताथैया ताथैया हो, नैनों में जबना, जबनों में सजना, सजना पे दिल आ गया। जबरदस्त गाना था और इसकी वजह से दर्शकों का दिल भी इस फिल्म पर आ गया था। बहुत धूम मचा इस गाने ने भी और उस जमाने में होने वाली हर शादी में ये गाना बजता ही बजता था। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ये इकलौता ऐसा गाना है जिसका पिक्चराइजेशन बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। इस गाने की शूटिंग में मटके ही मटके यूज किए गए हैं, सभी मटके कलरफुल हैं और चारों तरफ समंदर दिखाई देता है। बड़ा कलरफुल सॉन्ग है ये। अच्छा, एक और कमाल की बात बताता हूँ मैं। यादों के गलियारे से ये बात निकल कर आ रही है कि इस गाने में श्रीदेवी जिस तरह से पोज देती हैं, उस तरह से नई नवेली दुल्हन उस जमाने में शादी के एल्बम में पोज दिया करती थी। ओ क्या हुआ, आपने भी दिया? या आपने किसी का देखा होगा एल्बम जिसमें वो ऐसे पोज दे रही हैं? श्रीदेवी की नकल है वो। फिलहाल ये गाना जिसकी वजह से ये सब बातें याद आई, आइए सुनते हैं।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मैसी 24/7 लाइव पर। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जिनको देखकर सदमा सा लगता है, यार ये क्या फिल्म बना दी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनको देखकर वाकई सदमा लगता है, मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार ये क्यों हो गया। बात कर रहा हूं मैं फिल्म सदमा की। कार एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देने पर एक लड़की जिस तरह से छोटे बच्चों की तरह हरकत करने लगती है और इस रोल को जिस तरह से श्रीदेवी ने निभाया है वो लाजवाब है। इससे पहले लोगों को श्रीदेवी की ये काबिलियत पता नहीं थी। जब वो बॉलीवुड में आई तो उन्हें ज्यादातर एक्सपोज करने वाली अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने सदमा की तो लोगों को सदमा लगा कि इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस और ये क्या काम ले रहे हैं हम। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बालू महिंद्रा और ये कमाल की फिल्म बनी कमल हासन, सिल्क स्मिता और गुलशन ग्रोवर की अदाकारी के साथ। सभी का काम बड़ा कमाल का था और सिर्फ इसमें एक्टिंग या कहानी ही बेमिसाल नहीं थी बल्कि इसका म्यूजिक भी जबरदस्त था। वो गाना कैसे बोल सकते हैं आप, जिंदगी गले लगा ले, सुरेश वाडकर साहब की आवाज, गुलजार के बोल और महान संगीतकार इलैया राजा का म्यूजिक अमर कर दिया उसने इस गाने को। आज भी कभी सुनने को मिल जाता है ना, रुक कर सुनता हूँ मैं इस गाने को। और वो गाना जिसे गुलजार साहब ने बड़े दिल से लिखा, गाना था सुरमई अखियों में एक नन्ना मुन्ना सपना दे जा। ओहो क्या बढ़िया, और कितना मासूमियत से वो लिखा गया, उतनी ही मासूमियत से उसे निभाया यशुदास जी ने अपनी आवाज में। बहुत ही मासूम ये गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो इन गानों में से कुछ गाने आपको सुना देता हूँ। आपको एक और बात बता देता हूँ, इस फिल्म से इलैया राजा ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। और जानते हैं इलैया राजा को असिस्ट कौन किया करते थे, AR रहमान, इस वक्त नहीं लेकिन उसके बाद इलैया राजा उनके गुरु हैं। तो आइए इलैया राजा का संगीत बद्ध ये गाना सुनते हैं।

0: मुंशी जी, हमारे यार मुंशी जी ऐसे होता है क्या भाई? मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हूँ, वरना ना ही हूँ।
1: ना ना ना, मैं कोई डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ कि कुछ फिल्में टोटल एंटरटेनमेंट का पैकेज होती हैं, जैसे कि ये शराबी फिल्म की बात करेंगे हम। नमस्कार, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल, स्वागत। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर, सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। शराबी, प्रकाश मेहरा के निर्देशन में ये फिल्म बनी। अमिताभ बच्चन इसमें लीड में थे, जया प्रदा उनकी हीरोइन थी, ओम प्रकाश थे साथ में, मुंशी जी प्राण अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी बने थे, और मुकरी नथुलाल जी, जिनकी मूंछों का जिक्र होता है फिल्म में बार बार, दीपक पराशर थे साथ में, जो बड़े उम्दा अदाकार थे, और उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के दोस्त का किरदार निभाया था, जो बाद में एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। शराबी हिट फिल्म्स में से एक है, और इसका म्यूजिक और इसके गाने भी टॉप क्लास के हैं। बब्बी लहरी का संगीत और अनजान के लिखे हुए गानों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। इसी फिल्म का गाना है इंतहा हो गई, मुझे तो बहुत ही पसंद है गाना। इंतहा हो गई, इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। किशोर दा और आशा जी की आवाज और इसका जो म्यूजिक है ना, जिस तरह से उसे कंपोज किया गया, स्लो स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे टेम्पो पकड़ता है गाना, और जब जया प्रदा आ जाती है उस पार्टी में, उसके बाद देखिए आप म्यूजिक का टेम्पो कैसे फास्ट हो जाता है। जब आशा जी झूम के गाती हैं, लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूं मैं तेरे लिए दिल मेरा, बहुत बढ़िया गाना है, और ये मैं गाना आपको सुनवाने वाला हूं अभी के अभी। लेकिन फिलहाल उससे पहले एक और गाने का जिक्र कर लेता हूं, जो मुझे बहुत ही पसंद है इस फिल्म का। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बहुत कमाल का गाना। अच्छा, इस गाने के लिए किशोरदा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से, फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और बब्बी लहरी को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला था इसी फिल्म के लिए। वो गाना ना, मुझे 9 लाख मंगा दे रहे हो सजना दीवाने, किशोरदा, आशा भोसले और अमिताभ बच्चन ने बड़े मस्त अंदाज में गाया ये गाना। तो इतने सारे बढ़िया बढ़िया गानों का जिक्र हो गया, कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे यादों का कारवां विद समर, सिर्फ यहीं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: तुफा, तुफा, तुफा। लाया लाया लाया, वेलकम बैक। मैं आपके लिए एक तोहफा ले आया हूँ जिसका नाम है यादों का कारवां। बात हो रही है 80s की फिल्मों की, और ये जो फिल्म जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ आप समझ गए होंगे कौन सी फिल्म है। वो तोहफा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, अल्टीमेट गाना, और किशोर दा और आशा जी की दमदार जबरदस्त दिल को छू लेने वाली आवाज, हिंदी वर्ग के बोल बपिलाड़ी का सुपर डुपर हिट म्यूजिक इस गाने को हिट बनाने के लिए काफी था। ये गाना इतना हिट हो गया था कि उस जमाने में हर शख्स की जुबान पर था ये गाना। ये इकलौता ऐसा गाना है जिसकी शूटिंग में सिल्क और कांजीवरम साड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। वो जो तोहफा है जिसका जिक्र हो रहा है इस गाने में, वो तोहफा एक साड़ी ही होती है। तो पूरे गाने में पूरे सेट पर साड़ियां ही साड़ियां हैं साहब। ये गाना जितेंद्र और जयाप्रदा पर फिल्माया गया है, और जैसा कि मैंने कहा साड़ियां ही साड़ियां नजर आएंगी आपको इस गाने में। डायरेक्टर थे इस फिल्म के के राघवेंद्र, और ये जो फिल्म थी इसमें जितेंद्र साहब थे, श्रीदेवी, जयाप्रदा और शक्ति कपूर। शक्ति कपूर का रोल कैसे भूल सकते हैं इस फिल्म में, ललिता। ओए होए, बड़े डरावने बड़े घिनौने शख्स का किरदार उन्होंने निभाया है। मन करता है ना मारे, मुट्ठी भिज जाती है, दांत पिस जाते हैं, लगता है सामने आ जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बड़े खतरनाक विलेन बने, श्रीदेवी के पति बने हैं वो इस फिल्म में। हाँ, अरुणा ईरानी है इस फिल्म में, कादर खान है इस फिल्म में, और ये सब ऐसे लोग थे जो किसी भी फिल्म को हिट करने के लिए काफी थे। इनकी दमदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग्स के साथ एंटरटेनमेंट का जबरदस्त पैकेज बना देती थी। इस फिल्म के बाकी गाने भी काफी हिट थे, जैसे गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से। इसमें कल से कलसों का इस्तेमाल किया गया था। एक और गाना जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो इसी फिल्म का है, वो था अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। फिलहाल यहाँ पर भी मौसम एकदम अलबेला हो चुका है। जब इतने बढ़िया गानों का जिक्र हो चुका है तो कुछ गाने आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। आप सुनते रहेगा समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां। लौटता हूँ बहुत जल्द, स्टे कनेक्टेड।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ओ आप आ गए, वेलकम बैक। मैं हूँ समर, आप सुन रहे रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर। कितनी खूबसूरत गजल है ना, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये गजल है फिल्म एतबार की। सस्पेंस और थ्रिल के कॉम्बिनेशन से सजी थी ये फिल्म एतबार, जिसमें डिंपल कपाड़िया थी, राज बब्बर साहब थे, सुरेश ओबेरॉय थे, राज बब्बर इसमें नेगेटिव रोल में थे, अनुपम खेर थे, डैनी भी थे इस फिल्म में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे और अपने आप में बेमिसाल फिल्म बनी है। और इस फिल्म की पहचान ये गजल भी बन गई थी, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भूपेंद्र सिंह और आशा भोंसले ने जितनी शिद्दत के साथ इसे गाया है, उससे इस गजल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। दिल के तार छेड़ देता है, यादों के गलियारे से होकर गुजरने पर मजबूर कर देता है गाना। बिछड़ी हुई मोहब्बत याद दिला देता है, वो वक्त का हर लम्हा, वो बीता हुआ पल यूं हूबहू सामने आ जाता है। बहुत कमाल। इस गजल को लिखा था हसन कमाल साहब ने और म्यूजिक दिया था बप्पी लाहिड़ी ने। डायरेक्टर इस फिल्म के थे मुकुल आनंद। मुकुल आनंद अपने जमाने के सबसे बढ़िया स्क्रीन प्ले राइटर में से हुआ करते थे। बहुत खूबसूरती से वो फिल्में लिखा करते थे। हालांकि ये जो फिल्म थी एतबार, ये एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी। अल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म थी, थ्रिलर थी, डायल एम फॉर मर्डर, उसका रीमेक थी ये। लेकिन इस कहानी का इंडियन एडेप्टेशन बहुत ही जबरदस्त था। अच्छा, इस फिल्म का एक और गाना है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो बहुत ही खूबसूरत है, कभी मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। आवाज दी है आज एक नजर ने, आशा जी और भूपेंद्र ने इस गाने को गाया। दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी का एक बेहतरीन नमूना है ये। तो एक काम करते हैं, जब इतनी बातें हो गई इस फिल्म की और गानों की, तो कुछ सुन लेते हैं ना, फिर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। क्यों, सुनते रहिए सिंगापुर रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुकता जेलर साहब, ये झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसकी बारगाह में।
1: हम ऐसे लोगों की कद्र करते हैं।
2: नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। आप सोच रहे होंगे कि ये कालिया फिल्म के डायलॉग में क्यों सुना रहा हूँ। नहीं, कालिया का कोई जिक्र करने वाला नहीं हूँ मैं। इसमें एक जो डायलॉग था ना, ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुकता जेलर साहब, उससे मुझे अपनी अगली फिल्म याद आ गई। प्यार भी किसी के सामने झुकता नहीं है। प्यार झुकता नहीं, किसी से मिलने पर किसी को कुछ याद आता है और किसी को कुछ याद नहीं आता है। पर जब मिथुन पद्मिनी कोल्हापुरी से मिलते हैं तो उन्हें बहुत कुछ याद आता है। क्या याद आता है ये गाना सुनने के बाद सब पता चल जाएगा आपको। प्यार झुकता नहीं का गाना, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। लता जी और शब्बीर कुमार की दिल को छू लेने वाली आवाज, मैं सच कह रहा हूँ दिल को छू लेने वाली आवाज। आप इस गाने को ना आंख बंद करके सुनिएगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मेलोडियस म्यूजिक, आप इस गाने को सुनकर 100% उस दौर से होकर गुजर जाएंगे। बहुत सारी यादें इसके साथ लिपट कर चली आएंगी, देखिएगा आप। और जो भी यादें आए अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर शेयर कीजिएगा। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था विजय सदाना ने और मिथुन पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ डैनी इस फिल्म में थे, जो पद्मिनी कोल्हापुरी के पिताजी बने थे, बिंदु थी। और इस फिल्म की स्टोरी जितनी क्लासिक है उतने ही इसके गाने भी क्लासिक बन गए थे। चाहे इस फिल्म के किसी भी गाने को ले लीजिए आप, सब टॉप क्लास के हैं, उस जमाने में सब हिट हुए थे। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गाया गया गाना, चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा आ कसम खा लें, ये चाहत रहेगी सदा आ कसम खा लें। बहुत बढ़िया गाना था, ये भी बहुत हिट हुआ था। या फिर वो गाना हो वो दिलबर जानिए, या फिर वो तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, ये भी शब्बीर कुमार और लता जी ने गाया था। और इस गाने की शुरुआत होती है, हजारों आंधियां आईं हजारों बिजलियां चमकी, कभी साथी को तन्हा राह में छोड़ा नहीं करते। और उसके बाद ये शुरू होता है कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। होता यह है कि इस गाने से पहले डैनी साहब बुलाते हैं मिठुन चक्रवर्ती साहब को और कहते हैं कि देखो मेरी बेटी तो बहुत नाजों में पली है, इतने अमीर खानदान में रही है ये, तो क्या तुम इसके नाजो नखरे उठा लोगे? क्या हो तुम, एक फोटोग्राफर, कितना कमा लेते हो? उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि शायद मुझे ये कदम पीछे लेने होंगे, तब मिठुन चक्रवर्ती ये गाना गाते हैं। बहुत बढ़िया गाना है, चलिए सुनते हैं कुछ गाने इस फिल्म से और इन यादों की दास्तां को आगे बढ़ाते हैं यादों के कारवां के साथ।

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। और यादों का कारवां में अब एक ऐसी फिल्म का जिक्र करने वाला हूं मैं जो मुझे बहुत पसंद है और खास तौर से राज कपूर साहब की फिल्म है। तो राज कपूर के दीवानों को, उनके फैंस को तो ये फिल्म जबरदस्त पसंद आने ही वाली थी। राज कपूर साहब की फिल्म मेकिंग में खास बात थी, वो अपनी कहानी से एक बहुत बड़े मुद्दे की बात कह जाया करते थे। वो कोई सोशल स्टिग्मा हो सकता था, वो कोई ऐसी चीज हो सकती थी जो हमारे बीच घट रही है, और ऐसी एक चीज थी भारत की नदी गंगा, जो देश की लाइफलाइन है, वो गंदी हो रही थी, मैली हो रही थी। उसी के मद्देनजर उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत फिल्म बना डाली जिसका जवाब ही नहीं, राम तेरी गंगा मैली। बहुत लंबा नाम था इस फिल्म का, इसका बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन अगर आप ये फिल्म देख लेंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे। डायरेक्शन राज कपूर साहब ने किया और मंदाकिनी को इसमें पहली बार चांस दिया गया। मंदाकिनी इसमें डेब्यू कर रही थी, नई हीरोइन थी। मंदाकिनी के साथ राजीव कपूर थे, उनके हीरो राज कपूर साहब के सुपुत्र, और रजा मुराद, सईद जाफरी, सुषमा सेठ जैसे दिग्गज कलाकारों से ये फिल्म सजी हुई थी। उनके जो बेहतरीन अभिनय से ये फिल्म एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गई थी। रविंद्र जैन साहब का जबरदस्त म्यूजिक, और उनकी खास बात यह थी कि वो सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल वाद्यों का ही यूज करते थे अपने गानों में, अपने कंपोजिशंस में। और इस फिल्म के सारे गाने एक से बढ़कर एक हैं, जैसे कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ओए होए मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गाना। लता जी की आवाज ने इस गाने को क्या खूबसूरत बना दिया है। उनकी सुरीली आवाज में प्यार की धुन आज भी कानों में गूंजती रहती है। और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक राम तेरी गंगा मैली हो गई। संगीतकार रविंद्र जैन ने लिखा है गाना और लता जी ने इसे गाया। इस फिल्म का एक और गाना था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और वो था एक राधा एक मीरा। लता जी ने इस गाने को गाया। दरअसल ये गाना नहीं होकर एक भजन था जिसे गाने की तरह इस्तेमाल किया गया था। फिल्म की कहानी जबरदस्त है, और कैसे गंगा नाम की एक लड़की को अपवित्र करार दे दिया जाता है समाज में, जैसे जैसे वो पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है और कलकत्ता तक पहुंचती है। कैसे वो पहाड़ों की अल्हड़ लड़की, मासूम लड़की, कलकत्ता तक आते आते कोठे पर बैठ जाती है। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कथानक, और उससे भी बढ़िया इसका म्यूजिक। तो आइए इस फिल्म से कुछ गाने सुन लेते हैं और इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहेगा यादों का कारवां विद समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जीजी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

लीजिए एक बार फिर से लौट आया है समर लेकर यादों का कारवां रेडियो में से 24/7 लाइव पर। सागर, दरिया, तारे, आसमान, चांद, इन्हें लेकर शायरों ने क्या क्या नहीं लिखा और जो भी लिखा सब कमाल लिखा है। और जब सागर फिल्म बनी तो वो भी जबरदस्त कमाल कर गई। अगली फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है सागर। सागर वो फिल्म थी जिससे डिंपल कपाड़िया ने कमबैक किया था और उन्होंने कमबैक भी उसी हीरो के साथ किया जिसके साथ उन्होंने डेब्यू किया था। जी, चिंटू जी के साथ, मतलब अपने ऋषि कपूर साहब के साथ। रमेश सिप्पी साहब ने ये फिल्म बनाई थी, वही रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी। आप देखिए कैसे दो अलग तरह के कलेवर की फिल्में उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई। शोले एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और ये एक लव स्टोरी जिसमें मोहब्बत है, जिसमें दोस्ती है, जिसमें प्यार है, जिसमें जुदाई है, बहुत कुछ है, बहुत सारी इमोशंस हैं इस फिल्म में। कमल हासन, ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और नादिरा के साथ सईद जाफरी इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में शामिल थे। आर डी बर्मन साहब का आउटस्टैंडिंग म्यूजिक था, जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे इस फिल्म के लिए। इन शॉर्ट बोले तो झकास मस्त कॉम्बिनेशन था ये। इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग सागर किनारे को जिस तरह से किशोर दा ने अपनी मखमली आवाज में गाया है सुनकर ही कमाल लगता है। सागर किनारे मैं नहीं गाऊंगा, उनसे गवाऊंगा, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड है, हम सुनाएंगे आपको। आफ्टर ऑल इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो मिला था। इसी फिल्म का एक और गाना सागर जैसी आंखों वाली, ओए वो भी कमाल का गाना है। आज भी प्यार करने वाले अपनी महबूबा की खूबसूरत आंखों के लिए ये गाना गुनगुना ही देते हैं। बड़ा डूब कर गाया किशोर दा ने ये गाना। अच्छा, इस फिल्म की एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ। सागर की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इसके एक्टर और एक्ट्रेस यानी हीरो और हीरोइन को पहली बार, किसी भी फिल्म में ऐसा पहली बार हो रहा था कि उनके हीरो और हीरोइन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा था। डिंपल कपाड़िया को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का

और कमल हसन को बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला, चिंटू जी को नहीं कमल हसन को। तो ये कमाल की फिल्म, इसके गाने भी कमाल के थे, तो कुछ गानों के साथ बह लेते हैं हम भी। सागर में डूब मत जाइएगा क्योंकि अगली बार फिर से मुझसे मिलने आना है। मैं बस यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का। फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: जोश में रहो।
2: तुमको भी है खबर।

को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है,

0: कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी ना।

security, future, doubt through.

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: नहीं सुनी, तुम झूठ बोलती हो, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो।
2: नहीं
1: तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भर दिए तुमने?
2: अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर?
1: नहीं चीनी, खा मेरी कसम और कह दे कि यह तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती।
2: मैं झूठ कैसे बोलूं?

अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का। तक दिना दिन तक दिना दिन तक।

मस्ताने, ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता?

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: अच्छा, आपको कहाँ जाना ज्यादा पसंद है? जहाँ ज्यादा भीड़ होती है या फिर जहाँ थोड़ा सन्नाटा होता है? नहीं, देखो देखो, दोनों में से कोई एक जगह तो चूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठाया और चल दिए, तो हमें थोड़ा चूजी बनना पड़ता है। और अगर हम लाइफ में चूजी ना बने तो क्या फायदा। अरे, कुछ चीज को लेके ना नखरे दिखाने चाहिए कि नहीं नहीं सुनिए ना, मुझे ये पसंद है और वो नहीं है, मुझे वहां जाना है और वहां तो मैं कतई ही नहीं जा सकती, आज मेरा मूड नहीं है पब्लिक व्हीकल से जाने का तो मैं टैक्सी ले रही हूँ। तो कुछ मूड स्विंग्स ना अच्छे होते हैं यार, डेफिनेटली अच्छे होते हैं। सो हेलो, हाय, मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड मूड स्विंग्स के साथ बहुत सारे गाने भी यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ आपसे बातचीत करने के लिए आ चुकी है। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है,

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में रहो।
2: देखो आजकल ना वायरल जाने का तरीका बहुत ही बदल चुका है, और अगर आपको वायरल जाना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ रहा है यार। आपको हल्के में लग रही है चीजें। सो हेलो हाय, मैं आज यू नो फॉर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर कोई ऐसे इंडियन पॉलिटिशियन है जिसका सोशल मीडिया हैंडल सबसे ज्यादा लाइव है, सबसे ज्यादा अप टू डेटेड है, तो वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड आपको तो पता ही चल गया है कि जिस तरह से इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी फोटो वीडियोस वायरल जाती है, तो एक ये फैन फॉलोइंग तो अलग लेवल पर है यार। और जिस तरह से इस बार उन्होंने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करी है ना, ये लोगों को आइडिया बहुत ही अच्छा लगा है। एंड इसमें एक प्रोग्रेशन निकल कर आया, आपको बताती हूँ कि ये चीजें तो वायरल हो गई कि नरेंद्र मोदी जी उनके लिए टॉफीज लेकर पहुंचे हैं, लेकिन जिस टॉफी को वो लेकर वहां पहुंचे हैं ना, वो टॉफी रातों रात, हाँ जी, वो कैंडी जो है रातों रात सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। सो एनी हाउ इनडायरेक्टली उन्होंने जो प्रमोशन किया है ना उस टॉफी का, भाई साहब भाई साहब, ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो इनडायरेक्टली बहुत बड़े मैसेजेस दे के चले जाते हैं। सो मैं आरजे इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: To Shahi Maharani for the special treat.
3: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
4: Thank you Shahi Maharani for comforting and mouth-watering flavors.
3: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. We love you.
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235 8840. Terms and conditions apply.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: धीरे धीरे ABCD किचन की भी समझ में आने लगी है कि सुनो, अगर किचन में पिसा हुआ धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी नहीं हुई तो कुछ भी इंडियन कुजीन नहीं बन सकता। मतलब बेसिक से भी बेसिक चीजें बनाने के लिए ये चाहिए होगा। अब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भागोगे थोड़ी ना, हाँ तो बैठे बिठाए कुछ ही वक्त के अंदर घर पे ऑर्डर कर सकते हो ग्रोसरी। हाँ जी, सिंगापुर का अपना ग्रोसर प्लेटफॉर्म दैट इज GGMartOnline.com है ना। और अगर आपको रत्नागिरी के आम चाहिए है ना, मतलब इंडिया के इम्पोर्टेड आम चाहिए, तो किस बात का कर रहे हैं आप इंतजार, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और केमिकल फ्री मैंगोज है, इम्पोर्टेड मैंगोज है जिनके ऊपर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं लगता, आपकी हेल्थ के लिए वो सही नहीं रहते, राइट। तो GGMartOnline.com पर जाकर आप भी ऑर्डर दे सकते हैं। और NEW10 अगर आप डिस्काउंट कूपन लगाएंगे तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी आपका इंतजार कर रहा है। RJ इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Kiss on the Gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: 40% off. 40% joy alukas.
1: 40% off? Oh my god! Let's go! Let's go!
2: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joyalukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joyalukas, the world's favorite jeweler.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: जयपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। अगर सिंगापुर में ऑटो रिक्शा चलने लगे तो कैसा रहेगा? आप कहोगे माहौल बदल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, सिंगापुर में उतना चार्मिंग नहीं लगेगा जो इंडिया की सड़कों पर लगता है, मेरा भी ऐसा मानना तो है। लेकिन आपको पता है जब लोग यहाँ से इंडिया पहुँचते हैं ना और उन्हें वो ऑटो रिक्शास देखते हैं तो वो काफ़ी हैपनिंग लगते हैं। हाँ, सो मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से दो टूरिस्ट ना इंडिया पहुँचे और वो ऑलरेडी वर्ल्ड टूर पे हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक और थ्रिल काम कर लिया। इंडिया पहुंचने के साथ उन्होंने ऑटो रिक्शा हायर कर लिया और उससे करीबन 3000 किलोमीटर का सफर वो तय भी कर चुके हैं। हाँ, और उन्होंने सोचा है कि इंडिया को अगर एक्सप्लोर करना है तो ऑटो रिक्शा में बैठ के करना है। आए आए आए आए। ऐसे आइडियाज आपके और मेरे मन में क्यों नहीं आते? शायद हमारे पास छुट्टी नहीं है यार, इसलिए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
2: हायरिंग?